0: तन सो मानस नानका जो गलत ले पाए चौकण मुलाना बह चौके पाया सिखा कं चढ़ाइया गुरु ब्रह्म उठिया ओह मुआह चढ़ पया वे
1: लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गा लख ठगियां पैना मियां रात नसीना तक पहु कती है बामण मिटे वह बकरारन खाया सबको आखे।

दयाल कृपा करे ता साई कर पुराए से सौ सेवक सेवा करे जिसनो हुकम मनाए से हुकम मनया होए परवान ता कसमे का बहल पाए से कसमे पावे सो करे मन चुदा सो फल पाए से ता दरगे पैंदा जाए से ता दरगे पैंदा जाए से।

0: टिक्का कर लाओ गोबर तर न जाई, तोती टिक्का तै जप माली तान ले छा खाई, अंतर पूजा पड़ेक ते बा संजम तुरका पाई, छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाहे त्रंदा महला पहला।
1: मानस खाने करे निवाज छरी बगायन तिन गलताग, तिन कर ब्राह्मण तिन कर ब्राह्मण पूरे ना, उन पिया वे ही साथ कूड़ी रास कूड़ा वापार, कूड़ बोल करे आहार, कूड़ बोल करे आहार,

0: और अंतिम दिन है। ये सम्मेलन कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ था। सभी ब्रिक्स देशों के समर्थन से कल नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जारी किया गया। ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और ऐसी कार्रवाईयों से बचने को कहा जिनसे हालात और बिगड़ सकते हैं। उन्होंने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की और आतंकवाद के सभी रूपों और तरीकों से निपटने के अपने संकल्प को फिर से दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयोजित ब्रिक्स नेताओं के कल रात्रि भोज में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी एक लय कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। सिम्फनी में ब्रिक्स देशों के विभिन्न वाद्य यंत्रों और संगीत परंपराओं को भारत की शास्त्रीय नृत्य परंपराओं के साथ जोड़ा गया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों की संगीत संस्कृतियों के बीच समन्वय और ब्रिक्स परिवार की विविधता, सांस्कृतिक समृद्धि तथा एकजुटता की भावना को प्रदर्शित किया। सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से एक साथ मिलकर बेहतर दुनिया के निर्माण की भावना को दर्शाने वाले इस कार्यक्रम में ब्रिक्स देशों की समृद्ध संस्कृति और विविध सभ्यताओं को भी प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानारती नाम की पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। वे पुस्तकालय का भी दौरा करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। श्री शाह लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृहमंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। वहीं दिल्ली में अगले 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। एलेना रायबाकिना ने महिला अमेरिकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में कल खेले गए फाइनल में रूस की रायबाकिना ने बेलारूस की आयरा सबलेंका को पराजित किया। रायबाकिना का यह पहला अमेरिकी ओपन खिताब जबकि तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमेरिका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्वाइट्स और टिम पोइट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया था। भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटून कॉस्मिन की जोड़ी ने एटीपी टेनिस चैलेंजर का डबल्स खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है। वियतनाम के फान थिएट में स्पोर्ट फेस्टिवल चैलेंजर में खेले गए मैच में शीर्ष वरीयता प्राप्त इस जोड़ी ने फाइनल में जापान के यामातो सुएओका और नाओकी ताजिमा की जोड़ी को 6-1, 7-6 से हराया। महिला एशिया कप क्रिकेट के खिताबी मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत।

जो कुछ भी वापरिया जा वापर रहा है जा वापरेगा सब कुछ पले वास्ते ही है। फिर जो बीत गया उस ऊपर पछतावा क्यों, जो आन वाला है उसकी चिंता क्यों, ते वर्तमान उते साडे नाल

कुछ पढ़ना है ता गुरबाणी पढ़ो, कुछ करना है ता सेवा करो, कुछ जपना है ता नाम जपो, ते कुछ मंगना है ता सरबत दा भला मंगो। तुसी सरवण कर रहे हो जी भगती संगीत दा प्रोग्राम आराधना आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो।

मेरी मंगी हर दुआली हमेशा ही परमात्मा जी तुहाडे अगे उस चीज़ की जगह होवे, सिर ते हाथ रखो मालक जी, तुहाडा नाम जीवन की वजह होवे। बस इसी अरदास दे नाल तुसी हमेशा शुकराना करना है परमात्मा का।

दल बल समेत भरत के आगमन के समाचार से निषाद राज को आशंका होती है। क्या कारण है जो भरत वन में जा रहे हैं? यदि उनके मन में कपट भाव न होता तो साथ में इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों चलते? निषाद राज ने सेवकों तथा कुटुंबियों को सभी नावों को कब्जे में करके पानी में डुबो देने तथा सभी घाट रोक लेने के लिए सावधान कर दिया। कहा, सब लोग भरत से युद्ध में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं स्वयं भी स्वामी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि देकर 14 भुवनों को अपने यज से उज्जवल कर दूंगा। निषाद राज की ललकार सुनकर निषादों की एक छोटी मोटी सेना तुरंत खड़ी हो गई। सभी शूरवीरों ने कमर में छोटे छोटे तरकस बांध धनुष पर वाण चढ़ा लिए। रण के लिए ढोल बजा ही था कि बाईं ओर से छींक सुनकर एक वृद्ध अनुभवी निषाद के मन में विचार आया कि भरत से मिल लेना चाहिए, शकुन शुभ है, अतः युद्ध नहीं होगा। भरत कदाचित राम को लिवाने जा रहे हैं।

आओ तुहानू परिचय तहत अज प्रसारित होने वाले प्रोग्राम ते उन्हां दा प्रसारण समां दस दिए। सवेरे 7:02

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम च हो रहे भारत बनाम श्रीलंका एशिया वुमेन्स टी ट्वेंटी क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 फाइनल मैच की कमेंट्री सुनोगे तुसी शाम 7:40 से साडे रीजनल प्राइमरी चैनल DRM 864 किलोहर्ट्ज़ DTH की पंजाब सेवा FM बैंड 100.7 मेगाहर्ट्ज़ से रेनबो मोबाइल ऐप राही यह सी अज प्रसारित होने वाले साडे प्रोग्राम ते उना दा प्रसारण समा 6:55 हो रहे ने आओ सुनदे हां साडे दिल्ली केंद्र तो संस्कृत समाचार।

एक बार फिर तो स्वागत है जी प्रोग्राम सोनी सवेर दे विच। बिल्कुल जी, कई बार इदा ही होंगे भी जी यारी दोस्ती है ना वह अपने आप जाती है, तो कई बार तो रब ने चुने कुछ इस तरह होंगे ने साडे दोस्त जिहड़े हमेशा ही साडा हौसला जिहड़ा ना वह वधाई रखते हैं। पर कई बार इदा भी होंगे भी कई दोस्त साडे कोलों विछड़ जाते हैं तो असी उदास हो जाते हैं। तो उदास नहीं जी होना, क्योंकि परमात्मा ना सब कुछ जानता है। तो हुंदा उही है जो परमात्मा ने लिखा हुंदा है। कई बार जिहड़े दोस्त अलग हुंदे है ना वह इस करके हो जाते हैं भी कुछ गल्लां असी नहीं सुनिया हुंदियां पर रब ने सब सुन लिया है। तो जो फिर रब ने सुन लिया तो वह साडे नाल माड़ा तो कदे नहीं करनगे। उदास हो जाता मन कई बार साडे अनुसार चीज़ा नहीं हुंदियां, फिर असी नाराज़ भी हो जाते हैं, दुखी भी हो जाते हैं, लेकिन दुख नहीं जिहड़ा है वह अपने चेहरे पर आउण देना। हमेशा शुकराना करते रहना है, क्योंकि जिंदगी बड़ी खूबसूरत है और बड़ी ही औखी मिलती है यह जिंदगी। जेकर असी गल करिए भी रब ने मैनू की दिता, तो फिर सब तो वड्डी दात है जीवन। ते जे असी

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੀ ਸਵੇਰ, ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। 8 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਿਊਜ਼।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कल ब्रिक्स नेताओं ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई। घोषणा पत्र में कहा गया कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है।
2: नई दिल्ली घोषणा पत्र में पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस हमले में 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। बाद में इस हमले के तार पाकिस्तान से समर्थन और प्रशिक्षण प्राप्त आतंकवादियों से जुड़े पाए गए। घोषणा पत्र में आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और आतंकवादियों को पनाह देने वालों

0: के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया गया। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने सदस्य देशों से आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और आतंकवाद से निपटने में दोहरे मापदंडों को खारिज करने का आग्रह किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मिलकर कार्रवाई करने की भी अपील की। ब्रिक्स टीम के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के समापन भाषण में कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
2: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा।
2: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
1: विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार करना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और वर्तमान वास्तविकताओं के लिए उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
3: I would like to say that the outcome document.
4: मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
3: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
1: प्रधानमंत्री मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। एक रिपोर्ट।
5: ब्रिक्स सम्मेलन में आज ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स के 10 साझेदार देश हैं बेलारूस, बोलिविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से वार्ता करेंगे। यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष सम्मेलन की थीम है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं के लिए कल रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम नवरस द यूनिवर्स ऑफ शेयर्ड इमोशंस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में ब्रिक्स सिम्फनी, एक लय, कई संस्कृतियों के माध्यम से सदस्य और साझेदार देशों के संगीतकारों ने मिलकर प्रस्तुति दी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
8: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam,

0: New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।
2: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगा और उड़ीसा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद DRDO का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई एशियाटिक सोसाइटी में श्री गणेश ध्यानार्थी नाम की पांडुलिपियों की विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री पुस्तकालय का दौरा भी करेंगे और एशियाटिक सोसाइटी की पांडुलिपि संरक्षण प्रयोगशाला के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। श्री शाह आज बांद्रा रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के पुरस्कार समारोह में शामिल होंगे। वे लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए भी जाएंगे। गृह मंत्री कल से मुंबई के 3 दिन के दौरे पर हैं। इराक ने मेसान प्रांत में सैन्य अभियान कमांडर को बर्खास्त कर दिया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शलामचे सीमा चौकी को भी एहतियात के तौर पर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
3: सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर ड्रोन हमलों की जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। इससे पहले सऊदी अरब ने कहा था कि ये हमले इराक की ओर से किए गए थे, लेकिन उसने जवाबी कार्रवाई की जगह इराकी सरकार के प्रयासों को समर्थन का फैसला किया है। यमन में हौसी विद्रोहियों ने दावा किया है कि सऊदी अरब ने 48 घंटे के दौरान यमन में 100 से अधिक हवाई हमले किए। इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत के संकेत मिले हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने, शांति स्थापित करने और क्षेत्रीय स्थिरता मजबूत करने के प्रयासों को समर्थन देने के महत्व पर बल दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: और अब खेल खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: महिला T20 क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। वहीं पुरुष क्रिकेट में आज भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। टेनिस में एलिना रायबकीना ने महिला सिंगल्स अमरीकी ओपन टेनिस का खिताब जीत लिया है। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल में कजाकिस्तान की रायबकीना ने बेलारूस की आर्यना साबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से हराकर खिताब अपने नाम किया। रायबकीना का यह पहला अमरीकी ओपन खिताब है और तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है। इससे पहले अमरीका के क्रिस्टियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की की जोड़ी ने जर्मनी के केविन क्रेविट्स और टिम पुएट्स की जोड़ी को हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज न्यूयॉर्क में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव का मुकाबला अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। उधर भारत के प्रज्वल देव और फ्रांस के कॉन्स्टेंटिन बिटुन कोज़िमिन की जोड़ी ने ATP टेनिस चैलेंजर का डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस जोड़ी का ये दूसरा खिताब है।
1: नेपाल में बाढ़ प्रभावित 8 जिलों से और शव बरामद होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1386 हो गई है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास आई बाढ़ ने उत्तर और मध्य नेपाल के कस्बों और गांवों में भारी तबाही मचाई थी। मौसम विभाग ने गुजरात में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में तेज वर्षा का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान निकोबार में गरज चमक के साथ वर्षा की आशंका है। दिल्ली में अगले 5 दिन तक कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के आसार हैं। इस बीच केरलम और माहे में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर News on AIR Official को सब्सक्राइब करें।

0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आम सहमति से घोषणा पत्र की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, टैरिफ के नाम पर दादागिरी बंद हो, सीमा पार आतंकवाद और वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस का संदेश। नवभारत टाइम्स के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष बातचीत से खत्म हो। जनसत्ता लिखता है, मोदी और चिनफिंग में द्विपक्षीय वार्ता, सीमा मुद्दों पर दोनों पक्ष स्वीकार्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध। दैनिक जागरण के अनुसार पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा से आतंकवाद से भारत के को बल मिला। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर भी समर्थन। लोकसत्ता के मुताबिक डॉलर के मुकाबले ब्रिक्स देशों ने चुना स्थानीय मुद्राओं का रास्ता। साझा मुद्रा से पीछे हटकर भुगतान व्यवस्था मजबूत करने पर जोर। पंजाब केसरी की सुर्खी है, 21 ब्रिक्स देशों की जुबानी भारत लिखेगा नई कहानी। 20 साल का हुआ ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 20 वर्ष के लिए हमें नई और महत्वाकांक्षी कार्य योजना पर काम करना होगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने कहा, पाकिस्तान में है आतंकी हाफिज सईद, जम्मू की विशेष अदालत में दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क पर छापेमारी, कुपवाड़ा, कुलगाम, बांडीपुरा और सोपोर में कई जगह तलाशी। डोडा में जैश आतंकी का शव मिला। अमर उजाला की सुर्खी है, जिहाद के लिए युवाओं को जोड़ रहा अलकायदा का आतंकी गिरफ्तार। एटीएस ने आजमगढ़ से दबोचा, आतंकी संगठन की विचारधारा से जुड़े लोगों के ग्रुप में कोर्ट में होती थी बातें। हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग लेने वाला था मोहम्मद नबील। राजस्थान पत्रिका के अनुसार समंदर से बुझेगी मुंबई की प्यास, रोज 40 करोड़ लीटर मिलेगा पानी, चेन्नई के बाद दूसरा प्रमुख शहर बनेगा। संयंत्र में समुद्री पानी को आरओ तकनीक से खारा पानी मीठा होगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कम रैंक वाले कॉलेजों के ग्रेजुएट हार्वर्ड जैसा कमा रहे, अच्छी कमाई के लिए नामचीन डिग्री जरूरी नहीं। पत्र के अनुसार कॉलेज चुनने में कमाई को आधार न बनाएं। हिंदुस्तान का शीर्षक है, दिल्ली में 2.5 लाख निर्माण श्रमिकों को मिलेगा मुफ्त इलाज, निगरानी के लिए समिति गठित होगी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने का आह्वान। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सम्मेलन के अवसर पर कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी मेदिनीपुर जिले में DRDO का हथियार और मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। मौसम विभाग का गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। एलिना रायबाकीना ने आरेना सबालेंका को हराकर अमरीकी ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीता। और एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंस मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. BRICS leaders condemn 2025 Pahalgam terror attack in Jammu and Kashmir, call for zero tolerance towards terrorism, also express concern over escalation of tensions in West Asia. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral meetings with presidents of Kazakhstan, Philippines, Egypt, South Africa and Burundi today on sidelines of BRICS summit. West Bengal government approves DRDO's proposal to set up weapon and missile testing range in Purva Medinipur district of the state. IMD issues red alert for very heavy rainfall in Gujarat today. Irina Rybakina of Kazakhstan beats Belarusian Arina Sabalenka to win women's singles title of US Open tennis in New York. And in cricket, India to take on defending champion Sri Lanka in Women's Asia Cup final in Dubai this evening. And now the news in detail. BRICS leaders have condemned the April 2025 Pahalgam terrorist attack in Jammu and Kashmir. In a joint statement, BRICS leaders have called for zero tolerance towards terrorism, reaffirming the regional bloc's commitment to combating terrorism in all its forms. The New Delhi Declaration, adopted unanimously at the opening day of the summit, said that all acts of terrorism are criminal and unjustifiable, regardless of their motivation and who committed such an act. More from our correspondent.
3: The New Delhi Declaration condemned in the strongest terms the terrorist attack in Jammu and Kashmir on 22nd

हेलो जी, फोन मिल गया तो हडा। हेलो, मैनू लगता है कि फोन कितने रख के चले गए ने। हेलो जी, प्रोग्राम हेलो फरमाइश से स्वागत है जी। कौन बोल रहे ने? गीत असी सुन पा रहे हाँ, ते मतलब अपना फोन जो है ना होल्ड ते रख के या तो खुशी दे विच दसन गए ने बई रेडियो दे विच कॉल मिल गई है, क्योंकि प्यार ही तुसी सारे जाने इन्ना कर दे हो रेडियो नू, तुसी जुड़े इतना हुए हो साढ़े नाल, बई खुशी जिहड़ी है ना वो अपने आप तुहाडे लई त्यौहार बन जाता है जदों कॉल पहुँचती है तुहाडी आकाशवाणी दे वेहड़े, है ना जी। ते लेकिन कहिंदे आ वी कई वारी इदां हुंदा जीवन दे विच सानू कोई थोड़ी जी गल साडी पूरी ना होवे ते असीं निराश हो जांदे आ, उदास हो जांदे आ, पर इवें करना नहीं। जेकर कितें थोड़ी जी गल साडी छोटी जी गल पूरी नहीं हो रही ना तां उदास नहीं होना। सब तो जरूरी चीज़ आ भी अपने आप तो जितना, क्योंकि सब तो वड्डा दुश्मन भी साडा असी आप ही हाँ, भी ये काम मेरे कोलों नहीं होना यह सोच के जदों असी किसी काम नूं करदे हाँ। एवें थोड़ी किसी ने कहा भाई, डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। बिल्कुल जी, पहली लड़ाई इंसान ने अपने आप तो जितनी है, और जदों असी अपने आप तो जित गए, जदों असी कामयाब हो गए अपने आप तो, इस चीज़ तो साकार था असी अपने आप नूं कर लिया बई, हुण सानूं जे साडी इच्छा पूरी नहीं हुई तो दिल टुट जाएगा, इदां दी चीज़ां तो उपर उठ गए हैं ना, तो जीवन बहुत ही सुखाला हो जाएगा। लो जी, फिलहाल इंजॉय करते हैं इस खूबसूरत जे गीत नूं, ते तुसी इंजॉय करो जी प्रोग्राम हेलो फरमाइश।

घोषणा पत्र में कहा गया है कि आतंकवाद का कोई भी रूप आपराधिक और अनुचित है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तटीय गांव जुनपुट में हथियार तथा मिसाइल परीक्षण रेंज स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में रेंज स्थापित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना होगी। ये ओडिशा की चांदीपुर परीक्षण रेंज के अलावा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित परीक्षण केंद्र के बाद DRDO का तीसरा प्रमुख केंद्र होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन ब्रिक्स के सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। इन नेताओं में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग, सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश शामिल हैं। पुरुष क्रिकेट में भारत अफगानिस्तान के साथ 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का पहला मैच खेलेगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा। दूसरा

0: मैच मंगलवार को और तीसरा तथा अंतिम मुकाबला बृहस्पतिवार को होगा। सभी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7 बजे से खेले जाएंगे। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का सामना मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। उधर टेनिस में एलेना रायबाकिना ने अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स फाइनल में आज जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना अमरीका के बेन शेल्टन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। आओ हुण सुनदे हाँ प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी। इस प्रोग्राम च तुसी सुनदे हो अपने मनपसंद पंजाबी गीत। इस प्रोग्राम च अपनियां फरमाइशां भेजण लई वट्सएप नंबर नोट करो जी 94 65 53 60 77 ते टाइप करो जी अपने मनपसंद गीतां दे बोल, अपना नाम ते अपने शहर दा नाम ते सानू व्हाट्सएप राही भेज दिओ जी। पेश है प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी।

नरेंद्र चावला, श्री फतेहगढ़ साहिब तो हरिंश, प्रिंस मुस्कान, पाराची, महक, तनमीत, मनी, पीयूष, नेहा ते ओम। फरमाइशकारे ने जी अमरिंदर गिल दी आवाज़ विच गीत सुनांदी, आओ सुनते हाँ ये गीत।

प्रीत कौर, बटाला तों अमिका, विनोद, रोहित, साक्षी ते सुमित, मोता सिंह नगर तों बिट्टू जैन, मट्टू जैन, दीपक, गौतम, कोमल प्रीत कौर, रोमन प्रीत सिंह, सुखवीर सिंह संगरूर तों, आओ इन्हां सारिआं दी रली मिली फरमाइश ते सुनदे हाँ हंस राज हंस की आवाज़ विच ये गीत।

प्रोग्राम चल रहा है जी धमक जलंधर पैंदी। इस प्रोग्राम च अगली फरमाइश भेज रहे ने सानू राजस्थान तो धर्मेंद्र, कपिल, ईशान ते पूजा। न्यूजीलैंड तो अभिषेक जैन, अथरो जैन, मनजिंदर संधु, जशनप्रीत संधु ते बेबी संधु। बरका काना तो अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, कमल। मध्य प्रदेश तो नाना लामसे, मीना लामसे, तेजस, जय लामसे, हर्षिता लामसे। किशोर कुमार पांदरवाड़ा तो अनिल बुरांदे, अनुश्री, धनश्री ते बलहार शाह तो सूरज, प्राची, एकलव्य। सहारनपुर तो डॉक्टर अमीर, मुन्ना ते नाजम। यासीन हाशमी, बेगम हाशमी, नाजमा, तौसीफ, तैमूर हाशमी ते कलीम हाशमी। छत्तीसगढ़ तो उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल, नंदनी जंगेल। अंबाला तो रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशबद सिंह राहुल। ते मध्य प्रदेश तो जयपाल यादव, इंद्रपाल, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी, रिया, रेणु ते रौनिका यादव। फरमाइश कर रहे ने जी मोहम्मद रफ़ी ते शमशद बेगम दी आवाज़ विच इस गीत नु सुनन दी।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ब्रेक तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी तुहाड़े अपने प्रोग्राम तमक जलंधर पेंदी विच। इस प्रोग्राम च अपनी फरमाइशा भेजो जी छेती छेती। व्हाट्सएप नंबर है 9465560077। भुलना नहीं टाइप करो अपने मनपसंद गीतां दे बोल, अपना नाम ते अपने शहर दा नाम ते सानू छेती छेती व्हाट्सएप राही भेज दिओ जी। फिलहाल साढ़े कोल जो फरमाइश आ चुकी है वह है फाजिलका पंजाब तो क्रियांश बगड़िया, योगेश बगड़िया, ओम बगड़िया, गरिमा बगड़िया ते रजत, मेरठ कैंट तो दिग्दर्शन कविता गौड़, महाराष्ट्र तो संतोष खड़से ते विनोद खड़से, गुंज डुंडवारा तो शमशुल, शाहीन, फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, पिंड रामा जिला मोगा तो दविंदर पाल शर्मा, गुरदीप राणी, साहिल शर्मा, वीरचंद, उर्मिला देवी, श्री गंगानगर तो जगमोहन सिंह अरनेजा, बजरंग शर्मा, सोनू, मिंटू, करण, हरगुन, पिंड बलेरपुर तो बलजिंदर सिंह पनाग, पिंड कातरो तो अमरीक सिंह औलख, जसविंदर, सुखमनप्रीत, जशन ते बिंदर खेड़ी। फरमाइश कर रहे ने जी बी पराग की आवाज़ विच एक गीत सुनने दी। आओ सुनते हाँ बी पराग की आवाज़ विच एक गीत।

महाराष्ट्र तो फरमाइश भेजने ने राजू, गजानन संजय, ज्ञानेश्वर, ग्रीन पार्क कलोनी पटियाला तो रजिंदर पाबला, हरमन पाबला, रीतू सैनी ते गुरमन सैनी, जगदीश कुमार मक्कड़, अरविंद, मुकेश, नीरज, भुविन ते पूरा मक्कड़ परिवार फरमाइश भेज रहे ने फाजिलका तो। अंबाला हरियाणा तो फरमाइश भेज रहे ने राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन कौर, ज़िला फाजिलका तो विक्की, संतोष, रौनित ते पूरा मायल परिवार फाजिलका तो ही फरमाइश भेज रहे ने रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा ते डॉक्टर मदन लाल वर्मा। बठिंडा तो हरजिंदर सिंह बराड़ फरमाइश कर रहे ने जी गीता जैलदार की आवाज़ में गीत सुनने की। आओ सुनते हाँ ये गीत।

0: इस गीत दे नाल ही प्रोग्राम धमक जलंधर पैंदी खत्म हुंदा है। दिन दे 12 बज रहे ने। हुण तुसी सुनोगे समाचार साडे दिल्ली केंद्र तों।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और व्यवधानों ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के

0: आपके साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और व्यवधानों ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने ये बात कही।
1: महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिसरप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
1: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से AI, जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है। इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेनर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
0: और जानकारी के लिए चलते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित के पास। अंकित, ब्रिक्स सम्मेलन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है और आज अंतिम दिन सम्मेलन में क्या कुछ खास होने वाला है?
2: जी कनक, आपको बता दूं कि भारत चौथी बार ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता कर रहा है। वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए इस समूह में अब 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। भारत का ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार पिछले 5 साल में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है, जो ये दिखाता है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। इस शिखर सम्मेलन के पहले दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया।
0: जी,
2: इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। कनक, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वह नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। जी कनक,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद अंकित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ईरान के वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादे से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी और फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं में सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि जतेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं डिगा सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले 3 दिन के दौरान बारिश के आसार हैं। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में विकेटकीपर, बल्लेबाज संजू सैमसन और अरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर दे 12:05 हो रहे हैं।

0: जय हिंद। कदे उदासी आवे मन ते बच्चे कर दे दूर, गोदी दे विच आके बैठन सब गम चकना चूर। नन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे होन हार बच्चियां दा मनपसंद प्रोग्राम लैके उना दे रेडियो सेट उपर हाजिर हो चुके ने सुखदीप और गुरप्रीत। और एतवार दी इस खूबसूरत जी दोपहर नू होर ज्यादा खूबसूरत करन दी कोशिश करांगे नन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे होन हार बच्चियां दीआं हाजरियां दे नाल। और इस तो अलावा करांगे उन्हां दे नाल बहुत सारियां गल्लां बातां और जानकारी दी सांझ भी उन्हां दे नाल पवावांगे।
1: जी बिल्कुल, जदों असीं गल करदे हां गल्लां बातां ते जानकारी दी नाल दी नाल बाल जगत प्रोग्राम दे विच सारयां दा मनोरंजन भी जरूर करदे हां। बहुत बहुत स्वागत कर रहे हां प्रोग्राम बाल जगत दे विच सारे ही नन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चियां दा। अज असीं इक होर चीज चैक करनी है सुखदीप, की चैक करना है कि वधिया कौन बोलदा, सुखदीप भैया बोलदे है या गुरप्रीत दीदी बोलदे है या फिर कंप्यूटर दे गाने वधिया लगदे है या बच्चे वधिया बोलदे है। असीं इह सारियां चीजां जरूर चेक करांगे ते मैं देखांगी कि हां केड़ी जिहड़ी चीज है वो ज्यादा वधिया, फिर असीं उहनूं रैंकिंग भी करांगे। और मैं ये सोच रही हां कि घर जाके भी मैं चेक करांगी कि साडे घर दे विच जिहड़ी सब्जी है वो कौन वधिया बनाउंदा है, मेरे घर दे विच फीमेल जिहड़ियां ने वो वधिया सब्जी बनाउंदियां मैं। ते उस तों बाद जदों ग्राउंड च बच्चे जाणगे ना उत्थे जाके भी उहनां नूं लगदा है चेक जरूर करना चाहीदा है कौन वधिया खेडदा कौन घटिया खेडदा। दूसरियां नूं जदों असीं चेक करी जावांगे ना मैनूं लगदा साडी पर्सनैलिटी जिहड़ी आ ग्रो कर सकदी।
0: गुरप्रीत जी, गुरप्रीत जी, इह जिहड़ा मैं मेरी वाला चक्कर है, ये जेड़ा कंपीटीशन है, ये जेड़ा मुकाबले वाली दौड़ है ना, ये बड़ी खतरनाक है
1: जी। सुखदीप भैया जदों ये सारी चीजा कीतियां जाणगियां मैनूं पता चलेगा ना मैं वधिया कर रही हां कि घटिया कर रही हां। जिवें एक छोटे बच्चे दी तरह सोचा, जिदा बच्चे सोचदे ने कि हां सारा कुछ मेरे कोल भी होना चाहिए, तां फिर ये वधिया ते घटिया वाला चक्कर किदां पै गया इहदे विच?
0: देखो ये जिहड़ी मुकाबले की दौड़ है ये इंसान नूं लैके जांदी है जी स्ट्रैस दे वल, एंगजाइटी दे वल। और ये जिहड़ी मैं मेरी वाला चक्कर है ये बहुत ज्यादा नन्ने मुन्ने दोस्तों खतरनाक है। और अजकल ये मैं मेरी वाला अभियान जिहड़ा है ना वह बहुत ज्यादा इंटरनेट ते भी चलता पै, पर माहर जिहड़े अच्छे टीचर ने, जिहड़े अच्छे गुणीजन ने, जिहड़े बुद्धिजीवी ने, वह ये कहिंदे ने कि इस कंपीटीशन की दौड़ दे विच दौड़न का कोई फायदा नहीं। हुण तां साडे जिहड़े एजुकेशन सिस्टम ने उहदे विच भी ये चीज़ा इंप्लीमेंट कीतियां जा रही ने। पछमी मुल्कां की जे गल करिए तां उत्थे कोई कंपीटीशन नहीं है, वह कहिंदे हर एक बच्चा हर एक इंसान इंपॉर्टेंट है, हर एक इंसान दे विच काबलियत लुकी हुई है, कोई भी किसे तो घट नहीं। जे असी कुदरत दी गल करिए गुरप्रीत जी, तां फिर ते कुदरत दे विच बहुत सारियां चीजां पावरफुल ने। जिवें उह छोटे हुंदे कहानी सुणदे सी ना कि हवा ते धुप दी होगी लड़ाई, हवा कहिंदी कि मैं बलवान है ते सूरज कहिंदा भी मैं बलवान है, पर अखीर जदों तत् कढ़िया, जदों सिट्टा कढ़िया कि दोवें ही एक सिक्के दे दो पहलू ने, दोनों तो बिना ही जिंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती, जिंदगी संपूर्णता वाले नहीं बढ़ सकती। सो नन्ने मुन्ने दोस्तों इस दुनिया दे उत्ते असी सारे ही बड़े सुपीरियर हाँ, सिर्फ अपनी काबिलियत नूं पहचानण दी लोड़ है। कंपीटीशन जदों तुसी करदे हो ना ते वो कंपीटीशन तुहाडी एनर्जी नूं खिंच लैंदा है, नैगेटिव कर दिंदा है। और जदों तुसी ए करके कि हाँ ये चीज़ मैनूं चंगी लगती है, मैं अपने लिए करदा वा, फिर उहदे नाल की हुंदा कि तुहाडे विच प्रोफेक्शन भी वधदी है और तुसी उस चीज नूं बहुत अच्छे तरीके दे नाल सिख जांदे हो, कर पाउंदे हो।
1: बिल्कुल, बहुत वधिया गल है, बिल्कुल सही गल है। इही चीज बच्चां नूं समझाउणा चाहुंदे आ सी कि किस तरीके दे नाल अपने गुणां नूं असीं पहचानना है, दूसरियां दे नाल मुकाबला नहीं करना। हुण जदों मैं सोचिया कि दूसरियां नाल मुकाबला कीता जाए, उहनां दे नाल अपनी परख कीती जाए, कॉम्पीटिशन कीता जाए, तां सुखदीप भैया ने बहुत वधिया तरीके नाल समझा दिता कि नहीं इह चीज़ां बिल्कुल भी सही नहीं, अपने गुणां पहचानो। और इस दे नाल नाल सब तो जरूरी है कल जो तुसी सी आज जो तुसी हो उहदे विच किन्ना कु फर्क है। जे तां तुहाडे विच तरक्की हुई है, ग्रोथ हुई है, तुसी कुछ नवा सिखिया है, जे असीं कल नूं भी ना लईए, सिर्फ अज नूं ही लै लईए, सवेरे सुत्ते उठन तों बाद, सारा दिन चर्या अपना बिताउण तों बाद, शाम नूं तुसी सोचोगे तुसी की कुछ नवा सिखिया, जे नहीं सिखिया तां कल दे लई तैयारी शुरू कर दो कि मेरा अज कल नालों बेहतर होना चाहीदा है। ते आउण वाले कल दे लई जिहड़ी तैयारी है उह इहो जिही बच्चों होनी चाहीदी है कि जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ 70% ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ, 30% ਬਚੇਗੀ

0: सूरज जी म्यूजिकल ब्रेक तो बाद एक बारी फिर स्वागत है। नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों का मनपसंद प्रोग्राम चलता पाया जी बाल जगत, और बाल जगत दे विच नन्हे मुन्ने दोस्तों एक बारी तुहानू फिर तो दस दईए कि तुहाडियां हाजरियां बहुत ज्यादा जरूरी हुंदियां ने, और तुसीं अपनी आवाज दे नाल कविता कहानी गीत या कुछ भी तुसी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर दे हो तां सानू अपने मोबाइल फोन दे उत्ते रिकॉर्ड करके खूबसूरत रिकॉर्डिंग सानू भेज सकते हो, और असी उन्हों मॉनिटर करके इस प्रोग्राम दे विच पेश करन दी पूरी कोशिश करांगे। और हुण असी करन वाले आ जी नन्नी कलम दा आगाज़, और जिदे विच सानू बहुत सारियां रिकॉर्डिंग आईयां होईयां ने
1: जी बिल्कुल, और इंतजार भी रहिंदा है कि तुसी भी अपने रिकॉर्डिंग जिहड़ियां ने जरूर भेज सकते हो, क्योंकि तुहाडे ही रिप्रेजेंटेटिवज जदों अपनी आवाज आवाम तक पहुंचाउंदे ने ते बहुत ही चंगा लगदा है, क्योंकि मनोरंजन भी करदे ने, जानकारी भी जिहड़ी है ओह जरूर साडे नाल सारिआं दे नाल सांझी हो जांदी है। जिहड़े भी दिन हफ्ते चल रहे हुंदे ने उन्हां दे आधार ते तुसीं कुछ भी अपना पेन डाउन कर सकदे हो, चाहे ओह कविता है कहानी है या फिर अगर तुसीं कितेओ कोई आइडिया लैणा चाहुंदे हो आइडिया लै के उस नूं भी तुसीं बहुत वधिया तरीके दे नाल तैयार करके शब्दां नूं चंगी तरहां समझदिआं होइआं उस दे मतलब नूं समझदिआं होइआं जदों भी असीं गल करदे हां प्रेजेंटेशन दी, अगर तुहानूं शब्दां दी चंगी जानकारी है और उन्हां दा मतलब पता है ते तुहाडे जिहड़े वर्ड एक्सप्रेशंस ने शब्दावली जिहड़ी है तुहाडी होर ज़्यादा सोहणे तरीके दे नाल उच्चार दे विच सामने आएगी, तुहाडा उच्चारण दा लहजा बच्चों बदल जाएगा, तुहानू समझ लगेगी कि कित्थे पॉजेस लैने ने, कित्थे जड़ा है ओ मैं होर ज्यादा स्ट्रेस देना है, कित्थे मेरी पिच हाई होनी चाहिए है लो होनी चाहिए, तुहाडी टून किहो जिही होनी चाहिए है बोलण दे लई, कई बार कोई कटाक्ष हुंदा है, कई बार कोई इहो जिहे शब्द सी इस्तेमाल करने हुंदे ने जिस दे विच सवाल पुछया गया हुंदा है आवाम नूं ते उस विच तुहाडी आवाज जिहड़ी है ओह किवें तुसीं स्ट्रेस दिंदे हो उहनां वर्ड्स दे उपर, ओह बहुत ही ज्यादा डिपेंड करदी है कि तुसीं सिख्या की है और तुसी उस रचना जिहड़ी भी तुसी पढ़ रहे हो चाहे वह कविता है कहानी है या कुछ भी है वो तुसी समझ रहे हो उन्हों ते समझा भी पा रहे हो। कई बार की हुंदा है कि असी एहो जे शब्द जिहड़े ने वो इस नॉर्मल वे च ही बच्चे बोल देने आ, वो उन्ने वधिया तरीके दे नाल लोकां तक नहीं।

0: رحلتها.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने ये बात कही।
2: इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है। महामारियां, क्लाइमेट डिजास्टर्स और सप्लाई चेन डिसरप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
1: श्री मोदी ने बताया कि संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स एकीकृत पूर्व चेतावनी प्रणाली पर आम सहमति बन गई है। आपदा प्रबंधन के लिए भी पूर्व चेतावनी डेटा एकीकरण दिशा निर्देश

0: सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ने दिखाया है कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
1: श्री मोदी ने बताया कि संक्रामक बीमारियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए ब्रिक्स एकीकृत पूर्व चेतावनी प्रणाली पर आम सहमति बन गई है। आपदा प्रबंधन के लिए भी पूर्व चेतावनी डेटा एकीकरण दिशा निर्देश तैयार कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
0: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। यह भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
1: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की गई है।
0: स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। यह हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
1: सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके अलावा वे नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी बैठक करेंगे। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में ईरान के वित्त मंत्री सैयद अली मदनी जादे से मुलाकात की। श्रीमती सीतारामन ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ईरान की भागीदारी और फाइनेंस ट्रैक की चर्चाओं में सकारात्मक योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र नाथ दास की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा है कि जतेंद्र नाथ दास ने छोटी उम्र में ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना था और जेल की यातना भी उनके हौसले को नहीं टिका सकी। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ में भी तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर में भी आज तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी अगले तीन दिन के दौरान बारिश के आसार हैं। दुबई में एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टी20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम में विकेटकीपर, बल्लेबाज संजू सैमसन और अरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है। वैभव सूर्यवंशी भी टीम में शामिल हैं। तीन मैचों की श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला भी दिल्ली में ही खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ।

रात 7:40 ते दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम च खेडे जाने वाले विमेंस एशिया T20 क्रिकेट टूरनामेंट 2026 दी कमेंट्री सुनोगे साडे दिल्ली केंद्र तो ते रात 7:40 ते ही सुनोगे प्रोग्राम वगदे पानी साडे न्यूज़ ऑन AIR ऐप तो।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: आओ हुण सुणदे हां जी अज दे प्रोग्राम दा अगला गीत आतिफ असलम दी आवाज़ विच।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
3: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
3: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, एचआईवी किवें फैलदा है?
1: एचआईवी
3: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: आओ हुण सुनदे हां जी अज दे प्रोग्राम दा अगला गीत, श्रेया घोषाल दी आवाज़ विच।

0: मैं ता टीका ला लिया हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
3: वही मनु तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
1: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ बस कदे मान जा नहीं कीता।
3: अच्छा फिर एक गल दा जवाब दे एचआईवी किवें फैलदा है।
1: एचआईवी
3: नहीं पता ना समझदार वीरे ता सुन एचआईवी किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं एचआईवी दी बीमारी हो सकदी है।
2: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: साइबर फ्रॉड या धोखा

0: है बबल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ब्रेक तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी। तुसी सुन रहे हो प्रोग्राम फौजी वीरां लई। सुनदे अज दे प्रोग्राम दा अगला गीत मोहित चौहान दी आवाज़ विच।

0: से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। रियासत के कई जुनूबी जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इंडोनेशिया में 240 से ज्यादा अफराद को ले जाने वाला एक बहरी जहाज उलट गया। तकरीबन 140 मुसाफिर और अमले के अहलकार लापता बताए गए हैं। और ख्वातीन क्रिकेट में आज दुबई में T20 एशिया कप के फाइनल में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आलमी सतह पर वबाई बीमारियों, आबोहवा की तब्दीली से आने वाली कुदरती आफात और सप्लाई निज़ाम में रुकावटों से ये जाहिर हो गया है कि एक दूसरे से मुंसलिक आज की दुनिया में कोई भी बुहरान किसी एक खित्ते तक महदूद नहीं रहता। जनाब मोदी ने आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के खुले इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ब्रिक्स मुल्कों ने इसीलिए ग्रुप के अंदर मजबूती बढ़ाए जाने पर खास जोर दिया है। मजबूती, इख्तरा, ताउन और पायदार तरक्की के मौजू पर इजलास में जनाब मोदी ने चैलेंजों की बरवक्त निशानदेही, इसके लिए तैयारी और फौरी कार्रवाई किए जाने पर भी जोर दिया। वजीर आजम ने कहा कि मुतादी बीमारियों की रोकथाम और इस सिलसिले में इकदाम करने के लिए ब्रिक्स के मरबूत पेश आगाही निज़ाम के बारे में इतफाक राय कायम हो गया है। जनाब मोदी ने कहा कि कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने के लिए पेश आगाही से मुतालिक डेटा को मरबूत करने के सिलसिले में रहनुमा खतूत मुरतब किए गए हैं।
1: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पांस के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
0: जनाब मोदी ने ये तंबीह की कि टेक्नोलॉजी और अहम मादनियात को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने से तरक्की के रास्ते में रुकावट पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स मुल्कों ने टेक्नोलॉजी इख्तियार करने में सबकी शमूलियत पर जोर दिया है।
1: टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
0: जनाब मोदी ने कहा कि स्मार्ट ग्रिड और तवानाई के स्टोरेज के लिए उम्दा कारकर्दगी से मुतालिक एक ब्रिक्स डिजिटल सेंटर कायम किया गया है, जिससे माहौलियात के लिए साजगार तवानाई के निज़ाम को और ज़्यादा भरोसेमंद, मौसर और ज़्यादा काबिल रसाई बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि ब्रिक्स ग्रुप में निकाले गए हल्के फ़ायदे ग्लोबल साउथ की ज़रूरियात पूरी करने की खातिर दस्तियाब कराए जाने चाहिए। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि ब्रिक्स लॉजिस्टिक सप्लाई चेन ताउन फ्रेमवर्क से सप्लाई निज़ाम को और ज़्यादा मजबूत और भरोसेमंद बनाने में मदद मिलेगी। इख्तरा के मरबूत निज़ाम के तहत ब्रिक्स इनक्यूबेटर नेटवर्क स्टार्टअप इदारों और इनक्यूबेटर्स को बाहम मुंसलिक करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज भी मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ दो तरफ़ा मीटिंगें कर रहे हैं। इनमें कजाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्त तोकाएफ, फिलीपींस के सदर फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर, मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी, जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा और ब्रुंडी के सदर वारिस्ट नदाई शिमिये शामिल हैं। जनाब मोदी नाइजीरिया के नायब सदर कासिम शेटिमा और युगांडा के नायब सदर जेसिका अलूपो के साथ भी दो तरफा बातचीत करने वाले हैं। ब्रिक्स रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर में अप्रैल 2025 के पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इस हमले में 26 अफराद मारे गए थे जबकि कई जख्मी हुए थे। एक मुश्तरका बयान में ब्रिक्स रहनुमाओं ने दहशतगर्दी को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की पॉलिसी इख्तियार करने की अपील की और हर तरह की दहशतगर्दी से निमटने के अज़्म का इआदा किया। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के पहले दिन इत्तेफाक राय से मंजूर किए गए नई दिल्ली ऐलामिया में कहा गया है कि हर तरह की दहशतगर्दी माना अमल है और इसे किसी भी तरह सही नहीं ठहराया जा सकता, खा इसका मकसद कुछ भी हो और खा किसी ने भी यह हरकत की हो। मुश्तरका ऐलामिया में मगरबी एशिया में लगातार कशीदगी बढ़ने पर भी तशवीश का इजहार किया गया है और जहां तक हो सके जब्त तहमुल बरतने की अपील की गई है और ऐसी कार्रवाई से गुरेज

0: करने पर जोर दिया गया है, जिससे हालात मजीद बिगड़ सकते हों। आलमी सेहत तंजीम WHO ने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के दौरान ब्रिक्स मुल्कों की जानिब से नई दिल्ली एलामिया मंजूर किए जाने का खैर मकदम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम गेब्रियसिस ने सभी को सेहत से मुतालिक सहूलियात फराहम करने, मजबूत सेहत निज़ाम और पैथोजेन रसाई के बारे में मुज़ाकरात कामयाबी के साथ अख्ताम पजीर होने के ताल्लुक से अहद की सताइश की है। जनाब गेब्रियसिस ने तपेदिक यानी TB के खात्मे, सेहत से मुतालिक अफरादी कुव्वत को मुस्तहकम बनाने, डिजिटल हेल्थ और सभी के लिए सेहत की खातिर ब्रिक्स मुल्कों की कोशिशों को भी सराहा। WHO के डायरेक्टर जनरल ने सरबराह मीटिंग में गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तई तशक्कुर का इजहार भी किया। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आज नई दिल्ली में ईरान के इक्तसादी और मालियाती उमूर के वज़ीर सैयद अली मदनी ज़ादे से मुलाकात की। मोहतरमा सीतारमन ने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में शिरकत और फाइनेंस ट्रैक में बातचीत में सरगर्मी से शिरकत के लिए ईरान का शुक्रिया अदा किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय रेलवेज में अगस्त के महीने में बारबरदारी के एतबार से सालाना बुनियाद पर 5.4% की शरह तरक्की रिकॉर्ड की गई। इस साल अगस्त के महीने में 13,79,00,000 टन सामान की बारबरदारी रिकॉर्ड की गई, जबकि पिछले साल की इसी मुद्दत में ये 13,09,00,000 टन थी। रेलवे की वजारत ने कहा है कि इससे भारतीय रेलवेज के बारबरदारी के कारोबार को लगातार तकवीत मिलने की अक्कासी होती है। वजारत ने कहा है कि पिछले महीने 5 नए गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल में कामकाज शुरू हो गया है। इस तरह 31 अगस्त तक मजमूई तौर पर 149 गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल काम करने लगे थे। भारतीय मौसमियात महकमे ने गुजरात के कई हिस्सों, खासतौर पर जनूबी खित्ते में इंतहाई शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मानसून की मूसलाधार बारिश फिर से होने से जिंदगी के मामूलात मुतासिर हुए हैं। रियासत के 193 ताल्लुकों में बारिश रिकॉर्ड की गई। तापी ज़िले के उकाई खित्ते में सबसे ज़्यादा बारिश होने की इत्तला मिली है। वहाँ 11 इंच से ज़्यादा बारिश होने से पानी भर गया है। इंडोनेशिया में जावा के समुद्र में खराब मौसम के तनाजुर में 240 से ज्यादा अफराद को ले जाने वाला एक बहरी जहाज उलट गया। तकरीबन 140 मुसाफिर और अमले के अहलकार लापता बताए गए हैं। इमदादी कारकुनों के मुताबिक कम से कम 102 अफराद को बचाया गया है और तलाश की कार्रवाई जारी है। ख्वातीन के T20 एशिया कप क्रिकेट में के फाइनल में आज दुबई में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। भारत और श्रीलंका दोनों ही टीमों ने इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा है। मर्दों की क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के मुल्कों के एतमाद में इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ने टेक्नोलॉजी और अहम मादनियात को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ तंबीह की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर कजाखिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, जनूबी अफ्रीका और ब्रुंडी के सुदूर के साथ दो तरफा बातचीत करने वाले हैं। भारतीय रेलवेज में अगस्त के महीने में बारबरदारी के एतबार से सालाना बुनियाद पर 5.4% की शरह तरक्की रिकॉर्ड की गई। गुजरात के उकाई खित्ते में 11 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। इंडोनेशिया में 240 से ज्यादा अफराद को ले जाने वाला एक बहरी जहाज उलट गया और ख्वातीन क्रिकेट में आज दुबई में T20 एशिया कप के फाइनल में भारत का मुकाबला मौजूदा चैंपियन श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: खबरों तो बाद एक बार फिर स्वागत है जी। प्रोग्राम चल रहा है फौजी वीरां लई। इस दे नाल ही सुनदे अज दे प्रोग्राम दा अगला गीत सचिन जिगर दी आवाज़ विच।

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। इंडोनेशिया में 240 से अधिक यात्रियों वाली नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल लापता। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आज दूसरे और अंतिम दिन भागीदार देशों के मुख्य सत्र में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को विकासशील देशों की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
2: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी। हमारी विविधता हमारी पहचान रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और

0: हमारी प्रगति पूरी मानवता के काम आए।
1: प्रधानमंत्री ने आगाह किया कि प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों यानी क्रिटिकल मिनरल्स का हथियार की तरह प्रयोग प्रगति के मार्ग में बड़ी बाधा बन सकती है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स देशों ने नई तकनीकों को अपनाने में समावेशिता पर विशेष जोर दिया है। श्री मोदी ने कहा कि आपदाओं और बाधाओं ने यह साबित किया है कि आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में कोई भी संकट किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता।
0: आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में कोई भी संकट एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, इसलिए हमने ब्रिक्स समूह में रिजिलियंस बढ़ाने पर विशेष बल दिया है। चुनौतियों को समय रहते पहचानना, उनके लिए तैयार रहना और तुरंत कार्रवाई करना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के साथ इन्फेक्शियस डिजीज के प्रिवेंशन और रिस्पॉन्स के लिए ब्रिक्स इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सहमति बनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अर्ली वार्निंग डेटा इंटीग्रेशन गाइडलाइन तैयार की गई है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने बताया कि शहरों के बीच बेहतर तौर तरीकों को साझा करने की सुविधा के लिए ब्रिक्स अर्बन मोबिलिटी हब का गठन किया गया है।
0: अर्बन मोबिलिटी हब की स्थापना की गई है। भारतीय सभ्यता में प्रकृति को माँ का दर्जा दिया गया है। सदियों से हमारी मान्यता रही है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विकल्प नहीं पूरक है। ब्रिक्स में भी हमने मानव विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर बल दिया है। यही सस्टेनेबिलिटी का आधार है। ये भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा दायित्व भी है। इस दिशा में हमने कई पहलुओं पर प्रगति की है।
1: श्री मोदी ने बताया कि स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा भंडारण के लिए ब्रिक्स से डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है।
0: स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज के लिए हमने ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया है। ये हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक रिलायबल, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाने में मदद करेगा। एग्रो इकोलॉजी और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस पारंपरिक ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों की जरूरतों को पूरा करेगा।
0: ब्रिक्स नेटवर्क ऑन डिजिटल एग्रीकल्चर किसानों के लिए नई संभावनाएं तैयार करेगा। इसके माध्यम से एआई, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक आवश्यकताओं के साथ जोड़ा जाएगा। टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन हमारी साझा प्रगति में बाधा बन सकता है, इसलिए हमने टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन में इंक्लूसिविटी पर बल दिया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है।
0: भारत ने ब्रिक्स के मंच से मित्रता, सहभागिता और सहयोग को आगे बढ़ाया है। हमारा प्रयास रहा है कि ब्रिक्स कोऑपरेशन केवल सरकारों तक सीमित न रहे। हमारे एंटरप्रेनर्स, फार्मर्स, रिसर्चर्स, विमेन, यूथ और सामान्य नागरिक भी इसके सक्रिय भागीदार बने।
1: अब चलते हैं भारत मंडपम, जहां हमारे संवाददाता दीपेंद्र मौजूद हैं। दीपेंद्र, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की मुख्य बातें क्या हैं?
2: देखिए जिसका आपको बता दूं कि वर्ष 2006 में चार देशों के साथ शुरू हुए ब्रिक्स समूह में अभी 11 सदस्य देश और 10 साझेदार देश शामिल हैं। ब्रिक्स देश दुनिया की करीब 50% आबादी और वैश्विक व्यापार के लगभग 25% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के लिहाज से बात करें तो ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार जो है पिछले 5 सालों में दोगुने से ज्यादा बढ़ा है, जो दर्शाती है कि ब्रिक्स समूह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक साझेदार के रूप में उभर रहा है। ब्रिक्स की स्थापना की बात करें तो 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं और भारत चौथी बार जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और इस कड़ी में अलग अलग विषयों पर लगभग 350 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन कल सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। इसमें ब्रिक्स देशों ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए आपसी बातचीत, परामर्श और कूटनीतिक प्रयास के अपने संकल्प को दोहराया। आपको बता दूं कि भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन में भारत ने ग्लोबल साउथ की एक प्रमुख आवाज और समर्थक के रूप में अपनी वैश्विक भूमिका को और मजबूत किया है। जी कनक,
1: संबोधन की मुख्य बातें

0: क्या थी प्रधानमंत्री की?
1: देखिए, संबोधन में प्रधानमंत्री ने कई सारे बातें की, जिसमें सभी देशों को साथ लेकर चलने की बात थी। उसमें सबसे जो प्रमुख बात थी वो थी साउथ की आवाज, जो वैश्विक भूमिका जो है ग्लोबल साउथ, उस पर उनकी रही। जी,
0: जानकारी के लिए धन्यवाद दीपेंद्र। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों सहित नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और जानकारी के साथ है हमारे संवाददाता अक्षित वैद्यान। अक्षित, इन बैठकों में किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है?
2: जी कनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के सम्मेलन से इतर आज भी कई अहम द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पिछले दो दिनों से लगातार दुनिया के अलग अलग नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आज भी बैठकों का ये सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी आज कजाकिस्तान, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपतियों से के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। वहीं नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपतियों के साथ भी प्रधानमंत्री की अहम बैठकें निर्धारित हैं। यानी आज का दिन भी कूटनीतिक लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इन बैठकों पर सबकी नजर टिक, जिनके माध्यम से भारत को द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने और क्षेत्रीय और वैश्विक विकास के विषयों पर अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर ब्रिक्स के मंच से इतर प्रधानमंत्री मोदी की ये द्विपक्षीय मुलाकातें भारत की कूटनीति सक्रियता और वैश्विक साझेदारियों को नई दिशा देने के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। जी कनक,
0: धन्यवाद अक्षित। पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा है कि ब्रिक्स की सफल बैठक और नई दिल्ली घोषणा पत्र का अपनाया जाना भारत और वैश्विक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने सभ्यतागत मूल्यों में दृढ़ विश्वास रखते हुए एक बार फिर अपनी कूटनीति की शक्ति का प्रदर्शन किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ब्रिक्स में ऐसे कई ठोस कदम उठाए गए जिससे भारत विकसित देश बनने की राह पर तेजी से अग्रसर होगा।
3: भारतीय हितों की सर्वाधिक रक्षा हो, भारतीय हितों का संरक्षण हो, यही मूल उद्देश्य होता है किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का, कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये भारत के लिए गर्व का विषय है कि भारत में 11 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए और बहुत से विषयों पर चर्चा हुई। भारत विकसित भारत बने, इस दिशा में बहुत से ठोस कदम भी ब्रिक्स में भी उठाए गए।
0: भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ब्रिक्स में भारत की विदेश नीति सफल हुई है।
4: ये बहुत ही ऐतिहासिक सफलता है ब्रिक्स सम्मेलन की। इतनी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, उन्होंने एक वैकल्पिक बहुत प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय मंच रखा है। और राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आज ब्रिक्स का जीडीपी पूरे यूरोप अमेरिका के जीडीपी से ज्यादा है। और जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ पहलगाम में जो हुआ, एक जबरदस्त कंडेमनेशन हुआ है, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो भारत की विदेश नीति बहुत ही सफल हुई।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त माह के दौरान माल ढुलाई में सालाना आधार पर 5.4% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि में रेलवे ने 137.9 मिलियन टन माल की ढुलाई की, जबकि अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 130.9 मिलियन टन था। अगस्त 2025 की तुलना में इस बार माल ढुलाई से मिलने वाले राजस्व में भी 6.27% की वृद्धि हुई है। मिजोरम में बैराबी सैरांग रेलवे लाइन को शुरू हुए आज एक वर्ष हो गया है। इस रेलवे लाइन का उद्घाटन पिछले वर्ष आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में श्री गणेश ज्ञानरात्रि शीर्षक वाली पांडुलिपियों की एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि भारत एक समृद्ध और तेजस्वी ज्ञान परम्परा का स्वामी है।
5: तो जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, संस्कार, भाषा, अभिलेख, परंपराओं की रक्षा नहीं कर सकता, वो कितना भी शक्तिशाली हो, उसको समाप्त होने में देर नहीं लगती है। और जो राष्ट्र अपनी स्मृति, इतिहास, परंपराएं, संस्कार, अभिलेख, भाषाएं, व्याकरण की रक्षा करता है, वो कितने भी साल गुलाम रहे, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। भारत इसका उदाहरण।
0: गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई है। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात के नवसारी, वलसाड़ और केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दादरा और नगर हवेली में अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई है।

0: अमरेली, भावनगर, भरूच, सूरत, तापी और डांग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान किया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और गीर सोमनाथ सहित 13 अन्य जिलों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। आज सुबह 6 बजे तक राज्य के 193 तहसील में बारिश दर्ज की गई। हर्षल पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आज मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ, तेलंगाना, विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस दौरान महत्वपूर्ण नई दिल्ली घोषणा पत्र अपनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन समारोह में प्रतिभागी देशों की सहभागिता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने अगले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए चीन को शुभकामनाएं भी दी। भारत ने नेपाल के बाढ़ प्रभावित बेतरावती क्षेत्र में यातायात और संपर्क व्यवस्था को बहाल करने के लिए 70 मीटर लंबे बेली ब्रिज के पुर्जों की पहली खेप भेजी है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि पुल के पुर्जों की ये पहली खेप कल हेटौड़ा में नेपाल के सड़क प्रभाग को सौंप दी गई। इंडोनेशिया में आज जावा सागर में खराब मौसम के कारण 240 से अधिक यात्रियों वाली एक नौका के पलटने से लगभग 140 लोग और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने बताया कि कम से कम 102 लोगों को बचा लिया गया है और एक यात्री का शव बरामद किया गया है। दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से आज रात 8 बजे होगा। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा। प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण खनिजों को हथियार बनाने के खिलाफ चेतावनी दी। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन आज नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन से अलग मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी से द्विपक्षीय वार्ता की। रेलवे ने इस वर्ष अगस्त महीने में माल ढुलाई में 5.4% की वृद्धि दर्ज की। गुजरात के उकाई क्षेत्र में 11 इंच से अधिक बारिश हुई। राज्य के कई दक्षिणी जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और दुबई में एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला वर्तमान चैंपियन श्रीलंका से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्ज़ से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दोपहर दे 2:03 हो रहे ने। हुण पेश है जी प्रोग्राम रंगली धरती। अज दे इस प्रोग्राम विच आओ सुनदे हां निरंजन सिंह नूर टाडी ते उना साथियां दी आवाज़ विच कविश्री।
3: वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। श्री गुरु नानक देव जी दे आगमन दे बारे भाई गुरदास जी लिखदे हन, सतगुर नानक प्रगटया मिट्टी धुंध जग चानण होआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। डॉक्टर इकबाल लिखदा है, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामल ने जगाया ख्वाब से। पंजाबी दा शेर लिखदा भागा भरी तलवंडी दी धरती ए नी, तेरे विच अज जगत दा पीर आया, जिनू आखदी सिरबे रहीम दुनिया, भैन नानकी दा सोहना वीर आया। ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੋਧਰੇ ਦਾ, ਭਾਗੋ ਜਿਹਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਖੀਰ ਆਇਆ। ਲਾਲੋ ਜਿਹੇ ਪਮਲਾਏ ਹੋਏ ਫੁੱਲ ਦੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵਹਾਵਣੇ ਧੀਰ ਆਇਆ। 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਾਏ ਭੋਇ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਗਾ ਕੇ ਦੋ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਉਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ।

श्री गुरु नानक देव जी महाराज अपने मित्र भाई बाला जी नूं नाल लैके अपने पिता मेहता काली जी तो 20 रुपये लैके सच्चा सौदा करन वास्ते जा रहे हन। उस वेले दा जिक्र ढाडी जथा ऐं पेश करदा है।

0: सतगुरु जी का बचन मन के सालसराय जौहरी ने अपने घर के विच धर्मशाला बनवाई और रोजाना ही सत्संग करके अपने जीवन में सफला किया और होरना नू भी सच दे नाल जोड़िया। इस तो बाद गुरु जी ने तीन उदासियां होर धारण कीतियां अते संसार नू तारिया। जिस कार्य लई गुरु जी ने अवतार धारिया सी उस कार्य नू पूरा कीता अते दुनिया नू नाम दे नाल जोड़िया।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
0: सांदलवार दी धरती मर्दां दी जू शाह सवारां दा पिड़ है। पिंड बंगा बड़ी महानता रखदा है। एक अणखीले देश भगत ने जन्म लिया जिसका नाम मापियां ने भगत सिंह रखिया। भगत सिंह दा बचपन बीतिया जवानी विच पैर रखदिया ही उस समय देश विच नाम मिलवर्तन दी लहर जोरां ते सी। लाला लाजपत राय दी शहीदी दा बदला सांडरस नू मार के लिया गया। देश भगत पहुँचे ने झांसी। तारा चंद पंजाब तो झांसी पहुँचया। तारा चंद ने दसिया कि कौंसल विच इंपीरियल पब्लिक सेफ्टी बिल पास होना है जिस नाल देश भगतां ते सख्ती की जाएगी। देश भगतां ने मता पास किया कि बिल पास होने समय बंब सुटिया जाए। सरदार भगत सिंह ते भट्ट केशवर दत्त नवी दिल्ली कौंसल हाल विच पहुँच गए। जदों प्रधान ने सेफ्टी बिल पास होने का ऐलान किया तो भगत सिंह ने धाड़ दे के एक बंब सुटिया। कुछ इश्तहार भी सुटे गए। हाल विच धुआं तार हो गया। रौला रप्पा ते शोर शराबा मच गया। इन्ने चिर नू पुलिस अंदर आ गई। भगत सिंह ते साथी पटकेश्वर दत्त नू गिरफ्तार किया गया ते दोवां वीरां ने उच्ची आवाज़ विच इनकलाब जिंदाबाद दे नारियां दे नाल गूंजां ऐं पाईयां जी।

मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ अते राजस्थान दे कुछ हिस्सों विच भारी मीह पैण दी पेशनगोई कीती है। एसन हुण तक दीआं मुख सुरखियां। डीडीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। हुण तुसीं सुणोगे साडा रोजाना प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां। स्वागत। प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां सुन रहे सारे ही स्रोतियां दा तहे दिल तों निघा स्वागत करदे हां। दोस्तो, इस प्रोग्राम दे विच असीं तुहानूं सुणाउंदे हां तुहाडे मनपसंद पंजाबी फरमाइशी गीत, ते इन्हां गीतां दी फरमाइश तुसीं सानूं प्यारियां प्यारियां चिट्ठियां दे विच लिख के भेजदे हो। ते सुणाउण जा रहे हां प्रोग्राम दा पहला गीत दिलजीत दोसांझ दी आवाज़ दे विच।

रविदास नगर मलोड़तो ने नानक चंद जजोरिया, विजय कुमार बंटी कुमार ते प्रिंस कुमार जजोरिया, फ्रेंड्स कलोनी करनाल तो ने गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत ते मनविंदर सिंह पांधा, चंडीगढ़ तो ने सतीश अनेजा ते बिमला अनेजा, श्री गंगानगर तो ने बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा ते नरेश कुमार शर्मा। आओ दोस्तों, इन्हां सारिआं दी मिली जुली फरमाइश दे उत्ते सुणदे हां प्रोग्राम दा अगला गीत, युद्धवीर माणक ते गिप्पी गरेवाल दी आवाज़ दे विच।

पंगाला जिला फाजिलका तो ने कमलदीप गिल, गैवी गिल, दिलप्रीत सिंह, एकम, मोहन सिंह, मिंदरपाल, गुरमेल तिबोट सिंह, पिंड पक्की खुर्द फरीदकोट तो ने सतनाम सिंह गिल, गुरिंदर गिल ते गुरलीन, छत्तीसगढ़ पाटापारा ततरंगी तो ने द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा ते जवेंद्र कुमार वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ तो ने दिनेश कुमार वर्मा ते करुणा वर्मा, लवई छत्तीसगढ़ तो ने गुलाबदास मानिकपुरी ते रानी मानिकपुरी। आओ दोस्तों, इन्होंने सारे की मिली जुली फरमाइश के उत्ते सुनते हाँ प्रोग्राम का अगला गीत।

0: साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली तो ने गुरमीत सिंह मीता हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान तो ने जगमाल सिंह डागला हैप्पी डागला शोभा नायक जे एस नायक ते सारा डागला परिवार सादल शहर तो ने ओम प्रकाश चौहान मनु प्रकाश शिव प्रकाश ते वेद प्रकाश चौहान चाहल कलां नंबा शहर तो ने अमरजीत बंगा परमिंदर बंगा राजा बंगा कुलविंदर कौर ते अंबा चाहल पिंड समालसर जिला मोगा तो ने लक्ष्मण सिंह रहमत राजवीर अनमोल अरमान ते अमानत कारू आओ दोस्तों इन्होंने सारे की मिलीजुली फरमाइश दिते सुनते हाँ प्रोग्राम का अगला गीत सतिंदर सरताज की आवाज़ दे विच
1: डेडिकेट है जिन्होंने इस जमीन ते कठिया बहुत चंगे पल गुजारे ते जदों उन्होंने एहसास होवे कि असीं विछड़ जाना उस चीज़ का जिक्र है

मंडी हरसी रामलोटो ने महेश गर्ग सुषमा गर्ग ते जशन गर्ग पिंड कुड़ियाणा मंडी अरनीवाला तो ने त्रिलोक सिंह सुखना ते शिवजोत सिंह पिंड नथाणा जिला बठिंडा तो ने हरजिंदर छिंदा जसवीर रेखा गगन सोनी सीता और गीता पंचकुला सेक्टर नौ तो ने आशु अश्विनी गोविंद टोनी लव राधे भाविक ते अतुल शर्मा मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब तो ने विनोद वीपी रंजू अशोकपुरी सुशीलपुरी नीलमपुरी बीकेपुरी कैलाशपुरी रामा ते आर एस पुरी आओ दोस्तों इन्हां सारे दी मिली जुली फरमाइश दे उत्ते सुनदे हां प्रोग्राम दा अगला गीत सरदुल सिकंदर ते अमन नूरी दी आवाज़ दे विच

चकला बाजार समाणा तो ने पपुरा रखुश दिल संगीता जिंदल हसमुख जिंदल पिंड कुड़ियाणा जिला फाजिलका तो ने भोला सिंह सवांग डॉक्टर अमनजीत सिंह सुखमंदर कौर अमृतपाल कौर रितमन जोत गुरतेश्वर अश्मीन तेर बाब पिंड खाने की ढाब मलोट तो ने शमशेर सिंह कौलता जसविंदर कौर करण प्रताप सिंह मनरीत कौर ते तरनवीर करणवीर हाउस गुरु गोबिंद सिंह नगर पुछो कैंचियां तो ने प्रेम सिंह जौड़ा मनजीत कौर जौड़ा करणवीर करण दपिंदर वरिंदर सिमरन एकम कुलदीप दमन ते अभिजोत जिला श्री फतेहगढ़ साहिब तो ने रामनाथ अतापुरी सुखमनजीत सिंह सहजप्रीत कौर मखू फिरोजपुर तो ने बिल्ला बजाज हैप्पी कपूर फिरोजपुरी ते मनीष बजाज महस गेट नाभा तो ने सोमदत्त कैरब ज्योति राणी गुरमन्नत आओ दोस्तों इन्हां सारे की मिली जुली फरमाइश के उत्ते सुनते हाँ प्रोग्राम का अगला गीत जैजी बी की आवाज़ के

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स ते FM 103.6 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर अते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा जलंधर केंद्र है। शाम दे 4 बज रहे ने, साड़ी दूसरी सभा हुण शुरू हुंदी है। सभा दे शुरू विच आओ सुणदे हां हुण तक दे मुख समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन नूं संबोधन करदिआं चुनौतियां दी समें सिर पछाण करन उन्हां लई पहलां तों तैयार रहिण अते तुरंत कार्रवाई करन दी लोड़ ते जोर दित्ता। ब्रिक्स देशां ने गल्लबात सलाह मशवरे अते कूटनीतक यत्नां राहीं अंतरराष्ट्रीय विवादां नूं शांतिपूर्वक ढंग नाल हल करन प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराई है। विश्व सेहत संगठन WHO ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दौरान ब्रिक्स देशों वालों अपनाए गए नवी दिल्ली ऐलाननामे की शलाघा की है। पंजाब सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकार की मलकियत वाले थर्मल पावर प्लांटा में कोले की कोई कमी नहीं है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी कमिशन के मैंबर हरदीप सिंह गिल ने कल जलंधर में सफाई कर्मचारी यूनियन के आगुआ नाल मुलाकात की। पंजाब पुलिस दे विदेशां तो अपराधियों नूं फड़न वाले विभाग ने अपनी स्थापना दे 7 महीनों दौरान कल यूरोप विच मोलडोवा तो वापस लिआंदे गए 10 लोड़ींदे भगौड़ियां दी हवालगी यकीनी बना ली है। राष्ट्रीय मनुखी अधिकार कमिशन NHRC कल तो विकासशील देशों लई मनुखी अधिकारां बारे 6 दिनों दे समर्था निर्माण प्रोग्राम की शुरुआत करेगा। औरतां दे 2020 एशिया कप क्रिकेट दे फाइनल विच अज राती 8 बजे भारत का मुकाबला श्रीलंका नाल होवेगा। मर्दा दे क्रिकेट विच अज भारत अफगानिस्तान खिलाफ 3 T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की लड़ी का पहला मैच खेडेगा। यह मैच शामी 7 बजे शुरू होवेगा। मौसम विभाग ने अज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ और राजस्थान के कुछ हिस्सों में भारी मीह पैण की पेशनगोई की है। एसान हुण तक दे मुख समाचार। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हां। हुण समा हो रहा है जी प्रोग्राम परिमल दा। पेश है प्रोग्राम परिमल।

आकाशवाणी का ये जलंधर केंद्र है। प्रस्तुत है साहित्यिक पत्रिका परिमल। साहित्यिक पत्रिका परिमल के आज के इस अंक में आप सुनेंगे एक संवाद। विषय है हिंदी भाषा का विकास और वर्तमान स्थिति। इसमें भाग

0: मैं बलवेंद्र सिंह इस संवाद के कई पहलुओं को उजागर होने की आकांक्षा को लेकर आया हूँ। भाषा विचार विनिमय के साधन के साथ साथ एक भरी पूरी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। उस भरी पूरी संस्कृति के आलोक से हम एक काल विशेष के साहित्य, कला, विज्ञान, अन्य अन्य पहलुओं को उजागर होता हुआ देख सकते हैं। जहाँ तक हिंदी भाषा का प्रश्न है, तो हिंदी भाषा आधुनिक भारतीय भाषाओं के वर्ग में आती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का यह वर्ग लगभग 1000 वर्ष से आज तक हमारे मध्य बना हुआ है। इस तरह से हम देखते हैं कि मोटे तौर पर अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो, जिन्हें हम अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं, उनके खालिक बारी में हिंदी, हिंदुई, हिंदवी, हिंदुई जैसे शब्द मिलते हैं। या फिर देखें कि शरफुद्दीन यजदी के यहाँ 1424 में हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ है। बहरहाल यह वह काल है जब हमारे यहाँ अपभ्रंश, जो प्राकृतों से अपभ्रंश जो हैं, विकसित हो रही थी। और उस समय का जो साहित्य था वह आज जैसी परिनिष्ठित स्थिति में नहीं था, वह विकसनशील था। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर विनोद शाही जी, आपका व्यापक अनुभव है अध्ययन विश्लेषण के क्षेत्र में, आप बहुत नीचे उतरते हैं, आप उस आरंभिक काल के बारे में बताइए कि वह हिंदी कैसी रही।
1: बलवेंद्र जी, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपने बहुत अच्छे तरीके से बात की शुरुआत की और एक बड़ा परिदृश्य हमारे सामने इस लिहाज से रखा है कि जब हम किसी सवाल को इतिहास के आईने से देखते हैं तो इतिहास हमारी आंख बन जाता है, तब हम देखना शुरू करते हैं। दरअसल तो हिंदी भाषा को अगर हम 1000 साल के उस इतिहास को सामने रखते हुए देखें तो दो तीन चीजें देखने लायक हैं। पहली बात, जब संस्कृत से अपभ्रंशें निकल रही थी, संस्कृत भाषा टूट बिखर रही थी, या यह कहिए कि लोगों के बीच में जो भाषा बोली जा रही थी उसको एक भ्रष्ट संस्कृत भाषा के रूप में देखा जा रहा था, और उसके बीच में से दूसरी तमाम भाषाएं आ रही थी, तो ये जो प्रक्रिया है ये लोगों की अभिव्यक्ति के रूपों की तलाश है, इनके बीच से हिंदी आई। यानी हिंदी को मुख्यतः एक जन भाषा कैसे बनती है उसके आईने में देखना चाहिए, और उसके एक उदाहरण के रूप में देखना चाहिए कि एक जन भाषा का निर्माण होता कैसे है। और हिंदी दरअसल जिस रूप में विकसित हुई अपभ्रंशों के भीतर से, और एक बड़े इलाके में ये हिंदुस्तान के फैलती चली गई। आपने इशारा किया कि जब मध्य एशिया से बहुत से सूफी लोग खास तौर पर आए तुर्कों, मंगोलों और अन्य तमाम हमलों के साथ साथ, लेकिन उससे भी पहले सूफी लोगों की आमद रफ्त हिंदुस्तान के अंदर होनी शुरू हो गई थी। तो वो सूफी लोग जब हिंदुस्तान में आए तो सिंधु दरिया जैसे ही वो पार करते थे तो उनको लगता था कि एक अलग भाषा है यहाँ पर बोली जाती। अब उस भाषा के स्वरूप को तय करने के लिए एक हिंदी शब्द निकला। यानी हिंदी दरअसल भारत में मध्य एशिया से आए हुए लोगों के साथ जो एक संवाद यहाँ के लोगों ने रचाया, उस संवाद के भीतर से विकसित होने वाली भाषा के रूप में हमारे सामने है। दूसरी बात, जो हमारे व्यापारिक मार्ग मध्य एशिया की ओर खुल रहे थे, उनके भीतर से होते हुए जो व्यापारी जा रहे थे, सबसे बड़ा श्रेय उन व्यापारियों को जाता है जिन्होंने यहाँ की भाषा को, जब वो दूसरे देशों की ओर लेकर के जाते थे, उनके साथ संवाद की भाषा में बदलने की कोशिश करते थे, तो एक नई भाषा शक्ल ले रही थी, आकार ले रही थी। तो ये एक
0: डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि हम थोड़ा उससे पहले चले जाएं तो हम अपने हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है

0: उस समय में जो रासो ग्रंथ लिखे जा रहे थे,
1: वो बाद का समय
0: आरंभिक काल है बिल्कुल, और उसके बाद जो भाषागत विशेषताएं पैदा होती हैं कि जैसे राजस्थानी के साथ वो मिलकर डिंगल का स्वरूप आता है, जो ब्रज भाषा के प्रभाव से वो पिंगल का स्वरूप आता है, और हिंदी भाषा धीरे धीरे अपनी शक्ल इख्तियार करती है, और यह तो और थोड़ा उससे पहले चले जाएं तो चर्या गीत इत्यादि जो हैं, सिद्ध और नाथों की बानियां हैं, उनमें हिंदी भाषा का कोई ये अनगढ़ सा रूप पड़ा हुआ
1: ना, है। ना है। बलवेंद्र जी, मैं आप यहां से संवाद का सूत्र उठाता हूं। दरअसल हिंदी भाषा का इतिहास जिन लोगों ने लिखा, उन लोगों से भी मुझे लगता है कि ये एक बड़ी भूल हुई है। हिंदी भाषा के स्वरूप को गढ़ने में नाथों, सिद्धों और मध्य एशिया से आए हुए सूफियों के बीच में जो आपसी एक रिश्ता बना था, उसका सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने भाषा को वो रूप दिया है जो दरअसल हिंदी को हिंदी बना रहा था, और वो हिंदी गोरखनाथ, और गोरखनाथ तो आप समझिए कि 9वीं-10वीं शताब्दी के आसपास हिंदुस्तान में है, उनकी भाषा उनके भीतर से, और वो बहुत हिंदी से मिलते जुलते हैं, उसको हम हिंदी तो नहीं कहेंगे, लेकिन गोरखनाथ की हिंदी के संदर्भ में बहुत कम चर्चा होती है। हालांकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर गोरखनाथ के जो नाथ हैं और सिद्ध हैं और सूफी हैं, वो फैल जाते हैं अपनी वाणियों के साथ।
0: आपका संकेत बिल्कुल सही है,
1: वो अनगढ़ रूप नहीं है।
0: आचार्य शुक्ल ने उन्हें धार्मिक साहित्य कहकर नकार दिया था या एक विशेष श्रेणी में डाल दिया था। बहरहाल हम अपनी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएं।
1: बलवेंद्र जी, इसको थोड़ा स्पष्ट कर लें, हम यहाँ साहित्य की चर्चा नहीं कर रहे हैं,
0: हम
1: भाषा की चर्चा कर रहे हैं। पहली बात तो ये स्पष्ट होनी चाहिए यहाँ पर हमारे सामने। जब हम इसको साहित्य से उलझा देंगे सारी बात को, तो भाषा कैसे विकसित हुई ये हम स्पष्ट नहीं कर पाएंगे। भाषा का विकास मेरी राय आप मानिए, तकरीबन 1000 सन के आसपास हिंदी भाषा अपना रूप गढ़ना शुरू करती है। साहित्य बाद में आता है, 12वीं-13वीं शताब्दी में जो रासो साहित्य लिखा गया वो दरबारी साहित्य है, और दरबारों के अंदर जो साहित्य लिखा जाता है वो पहले लोक की छलनी में से छन करके वहां पहुंचता है, तब वो दरबारों के अंदर आता है, वहां की शोभा बनाता है। तो डिंगल पिंगल वास्तविक हिंदी नहीं है, वास्तविक हिंदी तो उन सिद्धों नाथों की है।
0: लेकिन वह उस समय की लोक भाषाएं राजस्थानी और ब्रज भाषा दोनों से प्रभावित हैं, और जो उस समय के साहित्य से भी प्रतिबिंबित होती हैं। बात रही अपभ्रंश की, अपभ्रंश में जो स्वर ध्वनियां हैं अ आ ई ई उ हैं ओ, ये ध्वनियां हैं, लेकिन हमारे यहाँ संयुक्त स्वर आई ओ
1: बलवेंद्र जी, मैं
0: यह है उत्तरोत्तर विकास में आ जाती है।
1: एक बात आपसे जरूर गुजारिश करना चाहूंगा कि हम यदि तकनीकी बातें न करें,
0: भाषिक विकास की बात करें, भाषा पर केंद्रित रहें, तो हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं ताकि हम इसको थोड़ा और व्यापक बना लें परिचर्चा को। तो डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मध्यकाल एक ऐसा परिदृश्य देता है जिसमें से भाषा के बहुत से ट्रेंड्स दिखाई देते हैं, उस पर आप कैसे केंद्रित होंगे?
1: सीधे रूप में जो भाषा नाथों सिद्धों से चलती हुई और यहाँ के व्यापारियों के माध्यम से, एक बात समझिएगा कि बौद्ध लोगों ने मार्ग खोले थे हिंदुस्तान के, बहुत सारे व्यापारी जैन व्यापारी थे हिंदुस्तान के अंदर, तो जैनों और बौद्धों के द्वारा वो व्यापारिक मार्ग खोले गए थे। नाथों सिद्धों और जैनों के द्वारा हिंदी भाषा का जो विकास हुआ मध्यकाल में, यानी भक्ति काल तक आते आते, उसने निर्गुणियों की एक खास तरह की जनभाषा का रूप लिया है, और वो जो निर्गुणियों की भाषा है उसके समानांतर सूफी खड़े हैं। और दरअसल देखा जाए तो हिंदी को हिंदी बनाने वाले तो उधर से आने वाले वो मुसलमान है, अमीर खुसरा का आपने जिक्र किया, लेकिन उसके अंदर आप बहुत से दूसरे सूफियों के योगदान को देख लीजिएगा, जिनको आज हम पंजाबी के कवि कहते हैं, वो तय करना मुश्किल है कि वो भाषा पंजाबी है के हिंदी है, चाहे वो फरीदुद्दीन शकरगंज हो या उसके बाद वहां से चलते हुए एक लंबी वो जो पंक्ति है जिसके अंदर सुल्तान बाहु से होते हुए बुल्ले शाह और वारिस शाह तक आप चले आते हैं, बेशक भाषा के धरातल के ऊपर वो लोग थोड़ा अलहदा मालूम पड़ते हैं, लेकिन वो मुसलमान जिस तरह की भाषा यहां पर रख रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे, वो हिंदी को हिंदी बनाने के अंदर एक बड़ा योगदान दे रही थी। और

0: उस दौर के अंदर भी मध्यकाल में भी निर्गुणियों और सूफियों ने दरअसल हिंदी को हिंदी के रूप में विकसित करने का, एक प्रगतिशील भाषा बनाने का काम किया। तभी तभी आप देखिएगा कि ये जो जितने हिंदुस्तान के अंदर डेरे हैं वो सारे के सारे निर्गुणियों के डेरे स्थापित होते चले जाते हैं, वो भाषा पूरे हिंदुस्तान में फैलती चली जाती है। और जिस ब्रज और अवधि की बात अक्सर हिंदी के विद्वान करते हैं हिंदी के नाम के ऊपर, उसके आगे चल कर के नाम लेवा उतने नहीं होते जितने कि इस निर्गुणी धारा की, उस जिस भाषा को अनगढ़ कह करके नकारा जाता है ना, वो अनगढ़ भाषा दरअसल केंद्रीय भाषा है, दरअसल सही हिंदी वो है।
1: डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात से यह सूत्र ले रहा हूँ
0: जी
1: कि आप जैसे जिस सूफियों की बात करते हैं, निसंदेह है उन्होंने भाषा के संवर्धन में, भाषा के विकास में महती योगदान दिया है। जैसे हम परिमार्जित अवधि के महाकाव्य पर केंद्रित हो, जायसी बहुत बड़े सूफी हैं और उनकी भाषा में बेशुमार शब्द जो हैं हिंदी के हैं, लोक बोलियों के हैं। इसी प्रकार अमीर खुसरो एक तरफ ब्रज भाषा की पंक्ति लिखते हैं तो दूसरा मिसरा जो है वह फारसी का आ जाता था, तो फारसी हिंदी यानी लोक से जुड़ाव जो है उस इस हिंदी भाषा की विशेषता रही है। और यही बात मुझे लगता है कि आप तुलसीदास के यहाँ हम देखें भाषा के जो सूत्र देखते हैं तो वे भी फारसी के शब्दों से गुरेज नहीं करते हैं, उन्हें लोक से जुड़ना है। इसी तरह हम और महाकवियों की भाषा देखें तो सूरदास के यहाँ भी अद्भुत छवियाँ लेकर भाषा आती है। अब हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि आपसदारी के मामले में हिंदू, मुस्लिम, सूफी और दूसरी धाराओं ने हिंदी भाषा को संवर्धित किया है।
0: नहीं, उन्होंने संवर्धित किया है कहना मुझे ठीक नहीं लगता बलवेंद्र जी,
1: लोक के आश्रय से ये संवर्धित हुई है।
0: मुझे ये लगता है कि उनके ही इस आपसी रिश्ते ने हिंदी को हिंदी बनाया। दो चीजें हैं, उन्होंने संवर्धित किया यानी वो बाहर के लोग हमें, वो बाहर के लोग नहीं है, वो भीतर के लोग हैं उनकी, यानी जब अपभ्रंशों का और अरबी फारसी का मेल होता है तो हिंदी पैदा होती है। ये आप ध्यान
1: निसंदेह आप जो बात कह रहे हैं वो भीतर के लोग हैं, मूल में पड़ी है,
0: वो भीतर के लोग,
1: जन संपत्ति होती है,
0: वो भीतर के लोग,
1: किसी की बपोती नहीं होती है। इन्हीं अर्थों में हम अपनी परिचर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो हमें लगता है कि यह जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के अंतर्गत हिंदी का जो बिल्कुल 1800 के आसपास का समय है, जिस समय आधुनिक साहित्यकारों ने लोक से अपने आप को जोड़ते हुए पत्रकारिता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से भाषा को संवर्धित किया, मैं यहाँ आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का भी नाम लेना चाहूँगा कि वे एक बड़े नायक हैं आधुनिक युग के। और उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास भारतेंदु हैं, ये बड़े नायक हैं जिन्होंने अपने समय की ज़रूरतों को पहचानते हुए और साहित्य धारा को एक विशेष रुख की ओर अग्रसर किया और वहीं लोक से जुड़ाव से मुनकिर नहीं हुए। तो आप उस संबंध में क्या कहेंगे
0: बलविंदर जी? यहाँ इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जब हम आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं तो जिसको आप आधुनिक हिंदी कहते हैं वो हिंदी हिंदी आधुनिक हिंदी का रूप लेती कैसे है? साहित्यिक भाषा की बात अलहदा, वो बाद में आएगी। पहले आप भाषा के स्तर पर देखिए कि भाषा जो रीतिकाल के अंदर ब्रज अवधि से पूरी तरह से ग्रस्त हो गई थी, उस भाषा को आधुनिक हिंदी का रूप देने का काम कौन कर रहे हैं लोग? वो जो लोगों के भी, यानी वही व्यापारिक वर्ग के ऊपर फिर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रगतिशील वर्ग हमारे भारत के अंदर भाषा के मामले में यहाँ का व्यापारी था। और व्यापारी को कोई गुरेज नहीं होता दूसरी भाषाओं के शब्द लेने में, दूसरी भाषाओं से सीखने में, उनकी संरचनाओं को हासिल करने में। तो अंग्रेज, पादरी और दूसरे तमाम लोगों का प्रचार हिंदुस्तान के अंदर होने लग गया था, एक अटपटी सी हिंदी हमारे यहाँ प्रस्तुत हो गई थी। और और उसके आमने सामने इन निर्गुणियों के द्वारा और सूफियों के द्वारा विकसित जो भाषा थी, जिसके अंदर आप उर्दू कहते हैं, उर्दू के अंदर सबसे

0: पहले यानी वो आधुनिक हिंदी की संरचनाएं सबसे पहले प्रकट होती हैं ब्रज और अवधि को तोड़ते हुए और उसके करीब होती चली जाती है हिंदी। तो वो हिंदी है ये जिसके अंदर मुसलमान यहाँ का और यहाँ का प्रगतिशील व्यापारी वर्ग वो भाषा को भाषा बनाने का काम कर रहा है, फिर वहाँ से उस भाषा को ग्रहण करते हुए साहित्य आगे बढ़ता है। फिर प्रश्न उठता है इन लोगों के सामने, हमारे साहित्यकारों के सामने, कि इसको एक मानक रूप दिया जाए, एक ऐसा रूप दे दिया जाए जिसको हम कहें कि ये हिंदी है। ये बाद की बात है, इसका मतलब है पहले हिंदी का कोई ऐसा रूप है, ढुलमुल रूप है जिसमें बहुत कुछ है,
1: विभिन्न अनुयायियों या धर्मों जातियों के योगदान की बात करें तो मुझे स्मरण होता है कि हिंदी भाषा के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, यह अपने आप में बहुत बड़ा सूत्र है कि जब वहाँ 1800 में वह कॉलेज स्थापित होता है और उसके बाद भाषा मुंशी होते हैं, भाषा मुंशी वो हिंदी के मुंशी, और उसके ठीक आगे आ जाएं तो मैं फिर गुरेज नहीं करूंगा साहित्य में जाने से, क्योंकि मुझे जो दो नायक हैं आधुनिक काल के, भारतेंदु और महावीर प्रसाद द्विवेदी, वे केवल साहित्यकार नहीं हैं, वे लोक से जुड़े हुए हैं, वे अपने समय के क्रांतिकारी हैं और क्रांतदर्शी व्यक्तित्व के स्वामी थे, और वे लोग सामान्य जन को जोड़ रहे हैं, उसकी एक भाषा और उसकी रवानी तैयार कर रहे हैं। और उससे भी थोड़ा आगे आ जाएं, मुझे लगता है कि स्वस्थ चर्चा हो जाएगी और हम कई पहलुओं को छू पाएंगे, तो हमारे सामने एक और साहित्य की बहुत सी विधाओं का विकास हो रहा है। ब्रज भाषा हाशिए पर चली जा रही है, कविता और गद्य की भाषा हिंदी आ रही है, एक और रचनात्मक साहित्य की बात यह हो गई।
0: अच्छा,
1: दूसरी और बात हो गई राजभाषा के क्षेत्र की।
0: नहीं, अभी रुकिए, आज़ादी से पहले का दौर देखिए कि आज़ादी से पहले के दौर में आपने भारतेंदु और द्विवेदी जी की चर्चा की, आज़ादी से पहले के दौर की हिंदी को देख लीजिए। पहले तो हो क्या रहा था उस दौर के अंदर, उस दौर में दरअसल हिंदी और उर्दू के बीच में कोई फासला नहीं था। पहली बात तो ये फासला अंग्रेज काल के अंदर अंग्रेजों की शह के ऊपर पैदा किया गया। वो जो सांप्रदायिक विभाजन था हिंदुस्तान का, उसने भाषाओं का विभाजन किया है, ये अंग्रेज काल के अंदर घटित होना शुरू होता है, इससे पहले नहीं था ये विभाजन। सूफियों की भाषा हिंदी है लेकिन आधुनिक काल के मुसलमान उर्दू बोलते हैं और हिंदू जो हैं और यहाँ के नायक वो हिंदी बोलना शुरू कर देते हैं, भाषा के अंदर एक लकीर पड़ जाती है। और इस लकीर को पाटने के लिए भाषा के स्तर पर जो सबसे बड़ा काम किया वो महात्मा गांधी करते हैं, वो कहते हैं मुझे तो हिंदुस्तानी चाहिए, मैं ये भाषा के स्थिरीकरण का मुझे एक मिनट अपनी बात कह लेने दीजिए कि भाषा के स्थिरीकरण का और मानकीकरण का ये जो मामला है जिसके अंदर आप संस्कृत के शब्दों को बहुत ले आते हैं, ये हिंदी की प्रकृति के मुताबिक नहीं है, हिंदी के उस रूप के मुताबिक नहीं है जिस रूप से हिंदी वो अपने प्रगतिशील रूप के साथ लोगों तक जाएगी और विकास करेगी।
1: डॉक्टर साहब, मुझे लगता है हम समय की अवधि को ध्यान में रखें तो वर्तमान स्थिति पर भी अपने आप को केंद्रित करें, तो एक और तो राजभाषा का व्यापक क्षेत्र है, संविधान के 343 अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भारत संघ की राजभाषा घोषित हो गई, सरकारी कार्यालयों के कामकाज की भाषा बन गई, दूसरी ओर साहित्यिक भाषा है, तीसरी ओर संपर्क भाषा हिंदी का क्षेत्र है। तो और अब जब हम भूमंडलीकरण के दौर में पहुंच ही गए हैं तो एक हिंदी का बाजार और बाजार की हिंदी विकसित हो रही है, तो आपका व्यापक अनुभव है, आप इस बारे में क्या कहेंगे?
0: मुझे लगता है कि अब समय आया हिंदी के विकास के, इस पूरे इतिहास को जिसको हमने अब तक आंका उसमें ये एक सुनहरा दौर अब आरंभ हुआ। सुनहरा दौर किस चीज़ का आरंभ हुआ, मैं आपसे ये चर्चा करना चाहता हूँ। इन सब चीज़ों के आलोक में अब ये दौर आरंभ हुआ है कि अब केवल भाषा के क्षेत्र में बाजार की अहमियत केंद्रीय नहीं बनी रहेगी, अब बात संस्कृति और ज्ञान विज्ञान के मौलिक विकास तक जाएगी। अब हिंदी अपने पैरों पर खड़े होना सीखेगी। अभी तक हिंदी संपर्क भाषा के रूप में, जन भाषा के रूप में कैसे विकास करना है, कैसे अपना दायरा बढ़ाना है, कैसे वो

0: प्रशासनिक कार्यों के लिए कैसे उपयोगी होगी, या कैसे वो त्रिभाषी फार्मूले के अंतर्गत कैसे पढ़ाई जाएगी, संस्थाओं में उसको कैसे हम लाएंगे, या उसको साक्षरता अभियान में आगे ले जाते हुए विद्यार्थियों की संख्या हिंदी के साथ कितनी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ी जाएगी। ये सवाल प्राथमिक थे, आरंभिक थे। आज़ादी के बाद 50 वर्षों में हमने इन सवालों के ऊपर गहन विचार किया, लेकिन अब हिंदी परिपक्व हो रही है और परिपक्वता उसकी ऐसी है, जो जो लोग ये देख रहे हैं कि बाजारीकरण हो रहा है, इंटरनेट आ रहा है, दूसरे तमाम मीडिया की दूसरी चीज़ें एक चुनौती बनकर के खड़ी हैं, ये इनसे हिंदी का होगा क्या? और हिंदी कहीं बहुत ज़्यादा अपनी वास्तविक प्रकृति और स्वरूप को तो नहीं खो देगी?
1: निश्चित रूप से आप ठीक संकेत कर रहे हैं कि वर्तमान में जो इंटरनेट और मीडिया विकसित हुआ है उसने हिंदी के विकास के कई और आयाम भी प्रस्तुत किए हैं। हमारे पास ई जर्नल की हिंदी है, हमारे पास ब्लॉग की हिंदी है, हमारे पास जो सामाजिक साइट्स हैं उनकी हिंदी है, और यह वह हिंदी का जगत है कि जिस पर हम पुराना चश्मा चढ़ाकर नहीं देख सकते हैं। जब तक हम इन सूचना प्रौद्योगिकी के साधनों से कदम ताल नहीं मिलाएंगे, हम इस नए ढंग की हिंदी को समझ भी नहीं पाएंगे।
0: ये नए ढंग की हिंदी, हिंदी के स्वरूप को बिगाड़ने में, उसका अंग्रेजीकरण करने में जो इसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं ना, या इसको दूसरी भाषाओं से एक घालमेल पैदा करने की ओर ले जा रही है, ऐसा हमें नहीं मानना चाहिए। ये हिंदी इतनी सशक्त हो चुकी है कि उसे मालूम है उसे क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है। वो कोई ऐसी वस्तु अब नहीं रह गई है कि उसे अंग्रेजी वाले हांक करके जिस दिशा में चाहेंगे मोड़ करके ले जाएंगे। वो अब भेड़ बकरी होने से इनकार करती है हिंदी हमारी। और हिंदी क्योंकि अब ज्ञान भाषा होने की तैयारी में है, अपने एक पंक्ति में मुझे याद आ रही है मोहनदास करमचंद गांधी से, जब उन्होंने एक अपनी बात गुजराती में और हिंदी में लिखी तो उनसे कहा गया कि आप इसको अंग्रेजी में लिखिए, इसको अंग्रेजी में पढ़ने वाले लोग होंगे। तो कह रहे थे कि नहीं, मैं चाहूँगा कि इसको हिंदी सीख करके अंग्रेज मूल में जिस भाषा में मैं लिखता हूं उसमें पढ़ें। हमें हिंदी को उस स्तर तक लेकर के जाने की बात सोचनी है, इसको ज्ञान की भाषा के रूप में विकसित करना है। ये चुनौती इसके भीतर से निकलती है।
1: ठीक कह रहे हैं। मुझे लगता है कि इस संवाद में हमने देखा कि हिंदी किस तरह से आपसदारी के माहौल में विकसित हुई और विभिन्न जातियों के लोगों ने और इसे संवर्धित किया और लोक के आश्रय से ये निरंतर गतिशील रही। वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी के जुड़ाव से इसमें अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं और यह कोई बिगाड़ प्रस्तुत नहीं कर रही है, बल्कि इसको सोचने समझने के लिए हमें अपना वह चश्मा, हमारे पूरा दृष्टिकोण परिवर्तित करना होगा। निश्चित रूप से भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की अपार संभावनाएं हैं।
2: हिंदी भाषा का विकास और वर्तमान स्थिति, अभी आप इस विषय पर संवाद सुन रहे थे। इसमें भाग ले रहे थे डॉक्टर विनोद शाही व डॉक्टर बलविंदर सिंह। इसी के साथ साहित्यिक पत्रिका परिमल का ये अंक समाप्त होता है। प्रस्तुति सोहन कुमार। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के जलंधर केंद्र से सुन रहे थे।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: शाम दे 4:30 बज रहे ने। हुण असीं तुहानूं श्री दरबार साहिब अमृतसर लै चलदे हां, जिथों तुसीं शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण सरवण करोगे कुछ ही पलां दे अंदर।

कोल कुमाई लालना गुरमन दीना, सुन शब्द तुम्हारा मेरा मन पीना। इस शब्द का गायन किया सी भाई बख्शीश सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। प्रभु प्राप्ति की बात गुरबाणी विच इउं है जिवें लहरां समुंदर विच ही समा जाण, भाव अंतर मिट जावे। जल विच जल तरंग दा समा जाना ही एकमिकता है, पर उसकी प्राप्ति सुखाली नहीं है। भगत कबीर जी गौड़ी राग दे ते पदे भाव रहाओ दी पंक्ति तो इलावा तीन पद्यां वाली रचना च फरमाउंदे ने कि उस अत वड्डे ठाकुर प्रभु नू उस दे सामे भावें उस दे भार जितना सोना भी क्यों ना पेंट कर दईए तां भी रब नहीं मिलता। उह तां मैं अपना मन उस नू अर्पण करके उस नू लभ लिया है। हुण तां मैनू पूर्ण भरोसा है कि मेरा रब ही अपना है। स्वै सिद्ध ही मेरे मन विच ए प्रीत गंड बज गई है, मेरा मन उस नाल रिज गया है। ब्रह्मा ने भी जिस रब दा कथन करन दी कोशिश कीती ओ भी उस दा अंत पौण तों असमर्थ ही रहा। ओ रब तां भजन बंदगी सदका सहज सुभाए ही मैनू मेरे हिरदे विच आण मिलिया है। हुण तां मैं अपनी चंचल बिरती अते मत छड दित्ती है। मैनू सोझी आ गई है कि सिर्फ प्रभु दी भजन बंदगी भगती ही मेरे नसीब विच है, मेरे निज भागां विच है। फरमान है, कंचन स्यो पाईए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। सरवण करदे हां भाई चन्नण सिंह मजबूर।

0: कंचन स्यो पाया नहीं तोल, मन दे राम लिया है मोल। इस शब्द का गायन किया सिपाही चन्नण सिंह मजबूर ते उन्होंने रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी जयदीप सिंह।
1: यह पावन शब्द भगत कबीर जी वल्लों गौड़ी राग विच उचारण किया गया है अते रूहानियत दे सोमे सांझी वालता दे रहबर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 327 ते सुभायमान है। इस शब्द की आरंभता विच भगत कबीर जी ने संसार दे लोकां नूं सुनेहा दिता है कि परमात्मा की प्राप्ति सोने दे वटे नहीं हो सकती। सोने दे पदार्थां भाव

हम कुर्बान है जाओ मेहरबाना, हम कुर्बान है जाओ, हम कुर्बान है जाओ तिना कै लैन जो तेरा नाओ। इस शब्द का गायन किया सी भाई प्यारा सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं है बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है और पिछले दो दिनों की चर्चाओं ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। श्री मोदी ने आज लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता निर्माण पर सत्र में आशा प्रकट की कि ब्रिक्स सम्मेलन में स्वीकार किया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश करने जा रहा है और दुनिया अब इस समूह से ठोस परिणामों की आशा करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। उन्होंने नई दिल्ली सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी ब्रिक्स देशों, सहयोगी देशों और उनकी टीमों की सराहना की। इससे पहले सम्मेलन के खुले सत्र में प्रधानमंत्री ने कहा कि छोटे उद्यमियों को ज्ञान, वित्त और नए बाजारों से जोड़ने के लिए ब्रिक्स एमएसएमई सहयोग पोर्टल स्थापित करने की पहल का प्रस्ताव रखा गया है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभों को ग्लोबल साउथ की जरूरतों के अनुसार ढाला और उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
1: कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव के साथ द्विपक्षीय बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ता असीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिस्र की साझेदारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ मुलाकात में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। उन्होंने मौजूदा आसियान अध्यक्ष के तौर पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में फिलीपींस की भागीदारी का स्वागत किया। श्री मोदी दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति तथा नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति के साथ और द्विपक्षीय बैठकें करने वाले हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि महामारी से निपटने की तैयारियों में भारत एक दशक पहले की स्थिति से बहुत आगे निकल चुका है। देश ने ऐसी जीवंत जैव अर्थव्यवस्था, टीका विकसित करने की बेहतर क्षमता और वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है जिनसे भविष्य में महामारियों से निपटने की वैश्विक तैयारियों में योगदान दिया जा सकता है। उन्होंने ये बात आज नई दिल्ली में महामारी के लिए तैयारी नवाचार गठबंधन के बोर्ड और निवेशक परिषद के लिए आयोजित एक समारोह में कही।

0: चीन के मोकी में भारतीय महिला और पुरुष टीम ने जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है। महिला वर्ग के फाइनल में भारत ने चीन को 1-0 से हराया, जबकि पुरुष वर्ग फाइनल में भारत ने कोरिया को 4-1 से शिकस्त दी। जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आज प्रमोद भगत ने पुरुष सिंगल्स SL3 में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: असी आकाशवाणी

0: सारे लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: आज तक इस योजना नाल 9 करोड़ 50 लाख तो ज्यादा लाभपात्री जुड़ चुके हैं। कि तुम भी 18 तो 40 साल की उम्र के हो तो मासिक अटल पेंशन समेत योजना के 3 गारंटेड लाभों की जानकारी ले अपनी बैंक शाखा नाल संपर्क करो।
2: हाँ जी तेजा सिंह जी लंघ आइए,
3: आ जाओ लंघे आओ शिंगारा सिंह जी
2: आ गए जी। तेजा सिंह जी जय हिंद जी।
3: शिंगारा सिंह जी की हाले चाले है?
2: हाले चाले तगड़े ने, वल ने। तो हाँ सुनाओ, ठीक ठाक हो?
3: बहुत वधिया
2: वधिया चाहिए।
3: जिंदगी बहुत खुश गवार चल रही है।
2: अच्छा, खुशगवार के खुश मजाक चलन रही है।
3: देखो जी, खुशी है ना यह मन की आ
2: जी।
3: जे थोड़ा मन खुश है तो थानू सारा कुछ ही चंगा लगता
2: है। वो तो है,
3: है? जे थोड़ा मन उदास है
2: जी
3: तो फिर तो महाराज उही है भी, कभी बंदा इस कंध च वजदा कभी ओद च वजदा।
2: देखो जी, मन उदास नहीं करना आप, मन नू खुश रखना।
3: बिल्कुल,
2: तो जिंदगी दे उतरा चढ़ाव बंदे दे आउंदे रहिंदे आ। सो इन्हों का ही प्रवाह ना करो, जिहड़ा इन्हों की प्रवाह करता आ वह फिर जिंदगी तरक्की नहीं कर सकता।
3: देखो ये गल जिहड़ी आ ना शिंगारा सिंह जी, आप कहने चलो हालात जिहड़े आ बंदे दे कदे चंगे कदे माड़े हुंदे रहिंदे आ।
2: सही गल आ,
3: पर खुश रहना जिहड़ा वह भी एक आदत आ।
2: हाँ,
3: जिस बंदे नू खुश रहने की आदत आ ना, उहने कोई ना कोई कारण खुश होण दा लभ ही लैणा।
2: लभ लैणा।
3: ते जेड़े बंदे नू नाराज़ होने की आदत आ, वह चंगा भला बंदा 10 बंदे बैठे होणगे हिड़ हिड़ हिड़ करदे, वह विच आ जावे ना ते वह बाकियां दे हासे भी खो के लै जांदा।
2: मंदी जी गल कर देणी विच उहने।
3: हासे
2: द्वारा नहीं आने, जिंदगी द्वारा नहीं आनी, बंदे नूं खुश रहना चाहिए जिंदगी दे विच। तो सो जिंदगी जिहड़ी आ हसीन पल लिया
3: है,
2: गवाओ ना।
3: बिलकुल गवाओ ना। और दूजी गल आ जिहड़ियां आदतां आ तुहाडियां, चंगियां आदतां अपनाओ
2: जी।
3: जे थोड़ियां आदतां चंगियां है ना तो मन थोड़ा आप ही खुश रहना चाहिए।
2: देखो मंदा चंगा सब अपन दिखता है, दिमाग तो अपना ही है, रब दिता।
3: बिल्कुल।
2: सो जिहड़ी चंगी चीज रख लो, माड़ी चीजा ना सुनो ना कहो। ठीक है नी। सो इस करके बंदे नूं जिहड़ा ना चंगियाई वल, चंगियाई दे राह ते तुरना चाहिए।
3: बिल्कुल बिल्कुल। और दूजी गल आ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਨਾ
2: ਜੀ,
3: ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਦਾ।
2: ਹਾਂ,
3: ਪਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ।
2: ਹਾਂ,
3: ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਆ।
2: ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਨਾਂ ਅਲੱਗ ਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਅਲੱਗ ਆ।
3: ਬਿਲਕੁਲ।
2: ਤੇ ਸੋਚ ਵੀ ਅਲੱਗ ਆ।
3: ਬਿਲਕੁਲ।
2: ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
3: ਹਾਂ,
2: ਸੜੋ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਚ ਕੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਅਪਣਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚੋ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਪਣਾਓ।
3: ਬਿਲਕੁਲ।
2: ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ।
3: ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲਓ।
2: ਹਾਂ,
3: ਤੇ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ
2: ਜੀ ਜੀ।
3: ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
2: ਹਾਂ,
3: ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਚਿੱਟ ਕੱਪੜੀਏ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਟੇਢੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਫਲਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਲਾਉਣਾ ਲੂਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਣਾ।
2: ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾ ਜਿੰਨੀ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੋ।
3: ਬਿਲਕੁਲ।
2: ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ,

मैं एक आलम नूं पुछिया, सूफी कौन हुंदा है? वो कहन लगा, सूफी ओ है जो सूफ दे काले कपड़े पहनदा है। अमीर लोग रंग बिरंगा कूड़ा रेशम पहनदे ने, ते सूफी फकीर काला खुरदरा सूफ। पर नाल ही वो आलम कहन लगा, ये तां बाहर

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला खास खबरां। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अज नवी दिल्ली विच खत्म हो गया है। अपने समाप्ति भाषण विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का एक समूह नहीं सगों समस्यावां हल करन दा एक मंच है। श्री मोदी ने अज नवी दिल्ली के भारत मंडपम विखे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दौरान कई विश्व नेतावां नाल दुवालियां मीटिंगां कीतियां। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन विच कई ठोस ते विकास मुखी नतीजे निकले ने। हाकी विच भारत दीआं पुरश ते महिला टीमां ने अज चीन दे मोकी विच जूनियर एशिया कप दे खिताब जीत लए ने ते औरतां दे 2020 एशिया कप क्रिकेट दे फाइनल विच अज भारत दा मुकाबला श्रीलंका नाल होएगा। मैच हुण तों थोड़ी देर बाद 8 बजे शुरू होएगा। हुण खबरां विस्थार नाल। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अज नवी दिल्ली विच खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन दौरान इस गल ते जोर दिता कि ब्रिक्स की विभिन्नता इसकी पछाण ते सहयोग इसकी प्रेरणा बनी रहनी चाहिए है ते इसकी प्रगति नूं मानवता दे हित च योगदान पाउणा चाहिए है। दो रोज़ा शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन अपनी समाप्ति भाषण में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का एक समूह नहीं सगों समस्यावां हल करन दा एक मंच है अते पिछले दो दिनों दौरान हुई चर्चावां ने इस विश्वास नूं होर मजबूत किया है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: लचकीलेपन, नवीनता, सहयोग ते निरंतर विकास बारे सैशन विच श्री मोदी ने उम्मीद प्रगटाई कि ब्रिक्स सम्मेलन विच अपनाया गया नवी दिल्ली ऐलाननामा भविख दे सहयोग लिए एक सांझा दृष्टिकोण ते स्पष्ट दिशा प्रदान करेगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स अपने तीजे दहाके विच दाखल होने वाले दुनिया हुण इस समूह तो ठोस नतीजों की उम्मीद करती है। उन्होंने कहा कि समूहक यत्न राही ब्रिक्स निश्चित तौर पर इन उम्मीदों से खरा उतरेगा। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले चेयरमैन वजों चीन नूं वधाई दित्ती। उन्होंने नवी दिल्ली सम्मेलन नूं सफल बनाउण विच सारे ब्रिक्स देशों भाईवाल देशों अते उन्हां दीआं टीमां दी शलाघा कीती। प्रधानमंत्री ने नेतावां दा उन्हां दी सरगर्म शमूलियत अते कीमती योगदान लई धन्नवाद प्रकट कीता। इस तों पहलां शिखर सम्मेलन दे खुले सैशन नूं संबोधन करदे श्री मोदी ने कहा कि महामारियां जलवायु

मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल

प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ भी मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। इंडोनेशिया के जावा सागर में नौका पलटने से 6 लोगों की मौत, लगभग 130 लापता। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने चीन के मोकी में जूनियर एशिया कप खिताब जीता और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। वहीं दिल्ली में T20 श्रृंखला के पहले मैच में भारत और अफगानिस्तान आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविध

0: एकता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
1: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
0: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल राइट में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वायदों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक सीमित नहीं होने चाहिए।
1: ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का विश्वास बढ़ा है क्योंकि ब्रिक्स में उनकी आवाज सुनी जाती है, उनके अनुभव का सम्मान होता है और सॉल्यूशन उनके लिए ही नहीं उनके साथ मिलकर बनाए जाते हैं। ब्रिक्स की शक्ति हमारी डायवर्सिटी और कोऑपरेशन में है। वी मे बी रूटेड इन डिफरेंट रियलिटीज बट टुगेदर वी राइज थ्रू कोऑपरेशन एंड ब्लॉसम फॉर ह्यूमैनिटी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दो दिनों तक चले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित रहा। इनमें वैश्विक संस्थाओं में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आतंकवाद, शांति और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे विषय शामिल रहे। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने भविष्य में महामारी से निपटने के लिए बेहतर सहयोग और संक्रामक बीमारियों की समय रहते पहचान के लिए एक साझा चेतावनी प्रणाली विकसित करने का समर्थन किया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी नेताओं ने चिंता जताते हुए अधिकतम संयम बरतने, बातचीत और कूटनीति के लिए समस्याओं का समाधान खोजने पर जोर दिया। साथ ही आम नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा की जरूरत पर बल दिया। इसके अलावा ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और उसके हर तरह की गतिविधियों की कड़ी निंदा की। नई दिल्ली घोषणा पत्र से आर्थिक विकास और वैश्विक शासन के क्षेत्रों में ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है। साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूती मिलेगी। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहा। पश्चिम एशिया की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा से यह स्पष्ट हुआ कि ब्रिक्स अब केवल आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रहा बल्कि वैश्विक राजनीतिक विमर्श में भी ब्रिक्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ब्रिक्स टीम के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने नई दिल्ली में कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया।
3: दोनों दिनों की बैठक का उद्देश्य अलग अलग था। कल विशेष सत्र में सदस्यों ने वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद पर सीधे और स्पष्ट विचार रखे तथा नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। आज खुले सत्र में इस सहमति को व्यापक ब्रिक्स परिवार और ग्लोबल साउथ के साझेदार देशों तक पहुंचाया गया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्तो तोकायेव के साथ बैठक में आपसी संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी के साथ भी बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी

0: इस दौरान क्षेत्रीय घटनाक्रम और भारत मिश्र की साझेदारी से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश कई क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करना जारी रखेंगे। श्री मोदी ने फिलीपींस के राष्ट्रपति आर मार्कोस जूनियर के साथ भी बातचीत की। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में श्री मोदी ने भारत दक्षिण अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। इससे पहले कल श्री मोदी ने इथियोपिया, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और चीन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने रूस और ईरान के नेताओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी मुलाकात की। समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ एआई तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से ये सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं।
5: सरकार ने 12 साल में देश के अंदर कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। हमारा देश 2014 में फ्रेजाइल 5 में गिना जाता था, आज टॉप 5 में गिना जाता है। अभी अभी पहली तिमाही के आंकड़े आए, 7.8% का ग्रोथ रेट, हमें सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व भर में बनाकर गौरव के साथ टॉप पर है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 40वीं किस्त जारी की। इसके अंतर्गत राज्य की 1,25,00,000 से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के कृषि विज्ञान केंद्रों और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किसानों से बातचीत की। श्री चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय कल से 18 सितंबर तक नई दिल्ली में संयुक्त परिचालन समीक्षा और मूल्यांकन कोर कार्यक्रम आयोजित करेगा। 5 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को सुरक्षा से जुड़े वर्तमान राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों से अवगत कराना है। अमेरिका ईरान संघर्ष से खाड़ी क्षेत्र में अशांति फैलने के साथ ही इसका असर अन्य क्षेत्रों में भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए इस सप्ताह राजनयिक प्रयासों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य और व्यापक क्षेत्रीय

0: सुरक्षा पर चर्चा के लिए ईरान और खाड़ी देशों की कल ओमान में बैठक होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस बीच इस हफ्ते एक बार फिर डिप्लोमेटिक कोशिशों पर नजर है। ईरान और खाड़ी देशों के बीच सोमवार को ओमान में बैठक होने की उम्मीद है, जिसमें स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट में जहाजों के आने जाने के लिए एक संभावित रूट को लेकर ओमान के साथ उसकी समझ बनी है। इस बैठक से बातचीत का रास्ता खुल सकता है और तनाव कम करने में मदद मिल सकती है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तुरंत दोबारा खोलने पर सहमति की संभावना कम है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि यह अमेरिका के उसकी शर्तें मानने पर निर्भर करेगा। दुबई से आकाशवाणी न्यूज के लिए मनीष शिवा।
0: इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका पलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल ने अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। भारतीय जूनियर महिला और पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब जीत लिया है। चीन के मोकी में खेले गए फाइनल में भारतीय महिला टीम ने चीन को 1-0 और पुरुष टीम ने कोरिया को 4-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने जूनियर हॉकी विश्व कप का टिकट भी पक्का कर लिया है। क्रिकेट में T20 महिला एशिया कप का फाइनल भारत और श्रीलंका के बीच दुबई में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12 ओवर में बिना किसी नुकसान के 121 रन बना लिए हैं। उधर दिल्ली में भारत के साथ 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में 6 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 15 जिलों में 48 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं।
2: बाढ़ प्रभावित जिलों में 1251 सामुदायिक रसोई केंद्रों के माध्यम से अब तक करीब 88,54,000 से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री रत्नेश सदा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को प्रति परिवार 7,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। सुरक्षित आवागमन के लिए 1,688 नावें चल रही हैं। राहत और बचाव कार्य के लिए SDRF की 27 और NDRF की 10 टीमें तैनात है। पटना से निधिश्री।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स को समाधानों का मंच बताया। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर श्री मोदी ने नई दिल्ली घोषणा पत्र के सभी निष्कर्षों को समयबद्ध कार्यों में बदलने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 द्विपक्षीय बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत को प्रयोगशाला में उत्पादित हीरो और आभूषण क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखना चाहिए। और क्रिकेट में महिला T20 एशिया कप के फाइनल में भारत और मौजूदा चैंपियन श्रीलंका के बीच दुबई में मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says BRICS is an ecosystem of solutions, stresses need to translate all outcomes of New Delhi Declaration into time-bound actions as 18th BRICS Summit concludes. Prime Minister holds 15 bilateral meetings with world leaders besides engagements with heads of international institutions on the sidelines of the summit. Home Minister Amit Shah says India should aim to become a global leader in lab-grown diamonds and jewellery sector. 6 persons killed and nearly 130 missing after Indonesian ferry capsizes in Java Sea. In hockey, India's men's and women's teams clinch Junior Asia Cup titles at Moshi in China. And in cricket, women's T20 Asia Cup final match between India and defending champions Sri Lanka underway in Dubai. Indian men's team takes on Afghanistan in the opening game of the 3-match T20 series in Delhi. And now the news in detail. The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS' diversity should remain its

0: and as an accompanist has won admiration, appreciation and respect from the classical music world. An A-grade artist of All India Radio, he is a member of ICCR's reference panel of artists.
1: आज के कार्यक्रम में सुमित सिंह पदम अपने वादन की शुरुआत राग रागेश्वरी से कर रहे हैं, जिसमें आलाप, जोड़ आलाप और जोड़ झाला के बाद विलंबत गत तीन ताल में, मध्य लय गत मत ताल में और अंत में तीन ताल में द्रुत गत पेश की जाएगी।
0: In tonight's concert, Sumit Singh Padam begins his recital with Rag Rageshwari, wherein Alap is followed by Jod Alap, Jod Jhala, and then Vilambit Gat in Teen Taal, Madhyalay Gat in Mat Taal, and Drut Gat is in Teen Taal.

0: यह था राग रागेश्वरी। सुमित सिंह पदम अब प्रस्तुत करेंगे राग तेज। आलाप के बाद तीन ताल में मध्य लय और द्रुतगत प्रस्तुत की जाएगी।
1: That was राग रागेश्वरी। सुमित सिंह पदम will now present राग देश। आलाप is followed by मध्य लय गत एंड द्रुतगत इन तीन ताल।

0: यह था सुमिर सिंह पदम द्वारा प्रस्तुत राग देस। तबले पर उनके साथ संगत की थी श्री मधुरेश भट्ट ने। यह कार्यक्रम आकाशवाणी जालंधर की प्रस्तुति थी।
1: That was राग देस presented by सुमित सिंह पदम। He was accompanied on tabla by मधुरेश भट्ट। This program was a presentation of आकाशवाणी जालंधर।

0: ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिक्स की विविधता ही इसकी पहचान बनी रहे, सहयोग प्रेरणा हो और प्रगति मानवता के हित में योगदान दे। दो दिन के शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स सिर्फ देशों का समूह नहीं बल्कि समाधानों का पारिस्थितिकी तंत्र है।
2: आप सबकी मौजूदगी ब्रिक्स की बढ़ती रेलेवेंस, ओपननेस और इंक्लूसिवनेस का प्रमाण है। पिछले दो दिनों की हमारी चर्चाओं ने हमारा विश्वास और मजबूत किया है कि ब्रिक्स केवल देशों का समूह नहीं सॉल्यूशंस का एक इकोसिस्टम है।
1: श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि शिखर सम्मेलन में अपनाया गया नई दिल्ली घोषणा पत्र साझा विजन और भविष्य के सहयोग के लिए स्पष्ट दिशा देगा।
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स अब अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, इसलिए दुनिया अब इस समूह से सिर्फ विचारों और वादों की नहीं बल्कि ठोस परिणामों की उम्मीद करती है। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के तौर पर चीन को शुभकामनाएं दी। इससे पहले आरंभिक भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों के लाभ केवल समूह तक ही सीमित नहीं होने चाहिए। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन के दूसरे और आखिरी दिन ब्रिक्स सहयोगी देशों के नेताओं का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में आज संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के कई ठोस और विकास केंद्रित परिणाम निकले। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंधों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि अलग अलग विषयों पर 50 से अधिक ठोस परिणाम हासिल किए गए। उन्होंने इसे भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की बड़ी कामयाबी बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ब्रिक्स सम्मेलन से इतर विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें की। पिछले तीन दिन में श्री मोदी ने राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों के साथ 15 बैठकें की। उन्होंने दुनिया के नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रमुखों के साथ कई अनौपचारिक बैठकें भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कजाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। प्रधानमंत्री ने बुरुंडी के राष्ट्रपति, नाइजीरिया और युगांडा

0: की उपराष्ट्रपति के साथ भी बैठक की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों का संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र और विनिर्माण श्रृंखला पूरी तरह से भारतीय हाथों में रहे। उन्होंने आज मुंबई में 52वें भारत रत्न और आभूषण पुरस्कार समारोह में कहा कि प्रयोगशाला में उत्पादित हीरों से इसके व्यापार का स्वरूप बदल रहा है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश में कई बड़े परिवर्तन किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सहयोगी दल और कई स्वयंसेवी संगठन 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक महीने भर देश भर में सेवा संकल्प अभियान चलाएंगे। मुंबई में आज श्री शाह ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस वर्ष अक्टूबर में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होंगे। इंडोनेशिया में खराब मौसम के कारण जावा सागर में 240 से अधिक यात्रियों को ले जा रही एक नौका उलट गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। करीब 130 यात्री और चालक दल के सदस्य लापता हैं। बचाव दल में अब तक 107 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। तलाश और बचाव अभियान जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और शुभ शुरुआत के प्रतीक हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। The 18th BRICS summit concluded in New Delhi today, with Prime Minister Narendra Modi underscoring that the BRICS' diversity should remain its identity, cooperation its inspiration, and its progress should contribute to the cause of humanity. In his closing remarks on the final day of the two-day summit, the Prime Minister said BRICS is not merely a grouping of nations, but an ecosystem of solutions. He said the discussions over the past 2 days had further strengthened this conviction. Mr. Modi expressed hope that the New Delhi Declaration adopted at the summit would provide clear direction for a shared vision and future cooperation. He stressed the need to translate all outcomes into time-bound actions that deliver last-mile impact.
2: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इंपैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इंपैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
1: Earlier in his opening remarks, Prime Minister Modi said special emphasis had been placed on enhancing resilience within the BRICS grouping as pandemics
3: and supply chain disruptions have shown that no crisis remains confined to one region in today's interconnected world. Prime Minister Narendra Modi held a series of high-level bilateral engagements on the sidelines of the BRICS summit in New Delhi. Over the past 3 days, Mr. Modi held 15 meetings with heads of state and government, besides several pull-aside meetings with world leaders and heads of international institutions. The meetings provided an opportunity to strengthen bilateral ties, discuss issues of mutual interest, and exchange views on regional and global developments. Union Home Minister Amit Shah has called upon the Indian gems and jewellery industry to ensure that the entire ecosystem and manufacturing chain of lab-grown diamonds remains firmly in Indian hands. Addressing the 52nd India Gems and Jewelry Awards ceremony in Mumbai, Mr. Shah said that lab-grown diamond market in terms of volume is expected to become nearly 50 times the size of the current diamond market, describing it as a monumental opportunity for India. In Indonesia, the death toll has risen to 6 after a ferry carrying more than 240 people overturned due to bad weather in the Java Sea today. Nearly 130 passengers and crew members remain missing. Indonesian rescuers said at least 107 people have been rescued so far as search

0: जी स्वागत है तुसी गीत जो तेरे से सर तोल सिकंदर साहब दे आवाज दे विच मैं थोड़ा दोस्तों नु स्वागत करन दा बड़ा होया जी नंबर है साडा 0181 3 1 7 1 सो ये नंबर डायल करके अगले दोस्तों आ गए ने जी ठीक है कौन है जी हेलो सर
1: श्री
0: अकाल सच अकाल जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम स्वागत है जी ज्ञान
1: सिंह
0: हां जी खेड़ा साहब की हाल चाल है जी थोड़े
1: बहुत बढ़िया
0: चलो मैं तो हां हेलो
1: थैंक
0: यू जी।

काम करने दी जा सकते क्योंकि रात एक चढ़ा वचन वाला है और इस प्रोग्राम में इतने खत्म करने दी मैंने इजाजत हो तो तुझे कितना जाना क्योंकि हम तो कुछ बना दे बाद अगला प्रोग्राम लेकिन फिर

डीटीआई पंजाबी प्रसारण सेवा का यह जलंधर केंद्र है तो तुम सुन रहे हो आकाशवाणी पंजाब। इस वेले रात 1 बज गया तो वेला हो गया प्रोग्राम पंजाबी मेलोडीज़ गीत का। तो आओ प्रोग्राम पंजाबी मेलोडीज़ गीत की शुरुआत करते हैं इस प्यारे जिहे गीत नाल।

कि परमात्मा पवित्र है, महान अति सुच्चा है। सतगुर सबद उजारो दीपा, बिन स्यो अंधकार तिह मंदर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा। सरवण करदे हैं डॉक्टर गुरनाम सिंह ते उन्होंने रागी जत्थे वालों गायन किया हुआ यह शब्द।

0: सतगुर सबद उजारो दीपा, बिनस्यो अंधकार ते मंदर, रतन कोठड़ी खुली अनुपा। राग बिलावल विचली चौपदे रचना दा गायन कीता सी डॉक्टर गुरनाम सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। सबद ब्रह्म है, सबद कल्याणकारी है, ए गुर का बचन कदे नष्ट नहीं हुंदा। ए सबद सदा सहाई है, सदा संगी है, इस लोक विच ते परलोक विच सबना दा रखवाला है। इस बचन नू सिमर सिमर के अंतर आत्मे वसौना चाहिदा है। यही गुरु का बचन जीवां दा सहारा है। इसनू जल डोब नहीं सकदा, चोर चोरी नहीं कर सकदा, अग्नि उसनू कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकदी। सुनदियां तेजिंदर सिंह होरां पासों वार्ता, गुर का सबद काटै कोट कर्म।
1: पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर हर थां वस रहा है। गुरबाणी दा पावन फुरमान है, थान थनंतर सबनी थाई, जो दीसै सो तेरा। बेशक मनुख धार्मिक पुस्तकां दा अध्ययन कर लवे, वधेरे तो वधेरे हर तरह दा ज्ञान हासिल कर लवे, हर धर्म ग्रंथ दा अध्ययन कर लवे, ओ परमेश्वर किसी चार दीवारी विच बंद नहीं है। उसका प्रकाश हर हिरदे विच, हर थां ते जरे जरे विच है। जिहड़ा मनुख अखौती कर्मकांडां तो उपर उठदा है, उसनू घट घट वासी सर्व निवासी नेरे ही ते नेरा दे दर्शन हुंदे हन। लोड़ गुरु दा शब्द

हकीकत जाइया रे कर लागू रंग मेरा चित ना चले मन पैओ पंग। इस शब्द का गायन किया सिपाही अर्शप्रीत सिंह होरा ने।

प्रदर्शन सरल तेरे से प्रोग्राम भक्ति संगीत डीटीटी पंजाबी प्रसारण सेवा का ये जलंधर केंद्र है ते तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी पंजाब। इस वेले सवेर के 4 बज चुके ने ते आओ हुण असीं तुहानूं श्री दरबार साहिब अमृतसर ले चलदे हां जित्थे तुसीं सरण करोगे शब्द कीर्तन का सिद्धा प्रसारण।

निरंकार है नाय लया नरक ना जाइए जियो पिन सत्य सदा देखा जे गवाई है जे लोड़े चंगा अपना कर पुन होमी सदाई है जे जरवाना पर हर जरवे।

0: दीपा लोहा मंडला खंडा ब्रभंडहार अंड जित पुजा खाणी सित जा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नान जन तो पाए कै समाले सबना जन करता करना किया चिंता पे करणीता सो करता चिंता करे जिन्हें पाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस ते दिवान भग नानक सचे ना बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
1: लख ने किया चंगे आया लख पुन्ना प्रवाह लख तप पुर तीर्थां सहजोग बैबाण लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखे आया वन जान नानक मत मिथ्या कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब।

0: पटपट गड्डी लदी है पटपट भरिया साथ पटपट बेड़ी पाई है पटपट गड्डिया खात पड़ी है जिते वर्ष वर्ष पड़ी है जिते मास पड़ी है जिती आरजा पड़ी है जिते सास ना लिख लिख एक गल होर हो मैं चकना चक महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया

राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ व्यसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पेनहार

0: मूर्ख पंडित हिकमत हुजुद संजे करें प्यार, तर्मी तर्म करें गवावे मंगे मुख दुवार, जति सुधावे जुतना जाने छट वह करवार, सबको पूरा पे हुए कट न कोई औखे, पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तो ले जापे महला पहला।
1: वदी सब जग नानका सच्चा वे कैसो, सबनी शाला मरिया करता करे सो हो, अगे जात ना जोर है अगे जीवन में, जिनकी लेखा पत पवे
0: चंगे से के पौड़ी तोड़ कर जनक तुद पा।

बिमल सो जान जान के रे, अमे नाम जाको फुरिया, इन सतगुर से शब्द रस पाया, नाम निरंजन उड़ धरिया, हर नाम रस के गोविंद गुण गाहक, चाहक तत् समत सरे, कवि कल ठकुर हर दास तने, गुर राम दास सार अपार परे, छुटत परवाह अमे अमरा पद, अमृत सरोवर साध भरिया।

पब जिन्हों सेवा करिया तिन पौ निवार अन पै पद दीना शब्द मात्र ते उतार तरे कवि कल ठकुर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे

सतगुरु नाम एक लिव मन जपे दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो तारन तरन खिन मात्र जाको दृष्ट तार है शब्द हृदय विचार है काम क्रोध खोवे जियो जीवन सबन दाता अगम ज्ञान बख्याता एहनिस ध्यान तावे पलक ना सोवे जियो जाको देखत दृढ़ जावे नाम सो निदान पावे गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल धोवे जियो सतगुरु नाम एक लिव मन जपे दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो संसार अगम सागर तुल्हा हर नाम गुरु मुख पाया जग जन्म मरण पगा ए आई ही है प्रतीत प्रतीत ही आई जिन जन के तिनको पदवी उच्च पई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई अब लोक्या ब्रह्म परम सब छुटकिया दिव्य दृष्ट कारण करन सतगुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री रामदास।

0: तरायो अभगत अगोचरे पर मन गुरु शब्द वसायो। गुरु रामदास कल उच्चरे तै जगत उदारन पायो। अभगत अगोचरे पर मन गुरु शब्द वसायो। गुरु रामदास कल उच्चरे तै जगत उदारन पायो।
1: वाहेगुरु।

0: अजय गंग जल टल सिख संगत सब नावे नित प्राण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जन सिर छतर आप परमेश्वर दियो मिल नानक अंगद अमर गुर गुरु रामदास हर पै गयो हरिवंश जगत जस संचरियो सो कवन कहे श्री गुरु मोयो हरिवंश जगत जस संचरियो सो कवन कहे श्री गुरु मोयो।
1: देख पुरी मैं गयो आप परमेश्वर पायो हर सिंहासन दियो श्री गुरु तह बिठायो रहस्य किए सुर दे तोह जस जय जय जंपै असुर गए ते भाग पाप तिन पीतर कंपै काटे सो पाप तिन नरो के गुर रामदास जिन पायो छतर सिंहासन पृथ्वी गुर अर्जुन को दे आयो।
2: जग जितो सत गुर प्रमाण मन एक त्यायो धन धन सत गुर अमरदास जिन नाम दड़ायो नवनिध नाम निधान रिद सद ताकी दासी सहज सरोवर मिलो पुरख भेटियो अभिनाशी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दड़ायो गुर रामदास।

हाँ बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर कवन उपमा देओ कवन सेवा सरयो एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जाने अंत दूजा न मान नाम सोया पार सार दीनो गुरद धर नल काबो पारस परस कच कंच न हुए चंदना सुभास जास मृत अंतर जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हों बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर सतगुर खेमा ताने आ जुग जूत समाने आन पाओ ने जा नाम टेक जित भगत अगाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने

अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह जिस पास बैठियां सो ही है सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दशाहो जिस पास बैठियां

हे गुरु चेत आवन का सदका सर्व सुख होवा जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रिया तो देग तेग फतेह बिरद की पैद पंथ की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसाह दान पुरुषा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी।